स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: आजकल की महंगाई में अगर कोई स्कूल पैसे कम कर दे तो भाई सोचने की बात होती है कि इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है, एक प्री स्कूल जो लिंकॉक बारू में है, इंस्टेड इट इज स्लैशिंग इट्स फीस और ऐसी वैसी भी नहीं 50% टू गेट द किड्स टू एनरोल। सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती। ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट द स्कूल इन लिंकॉक बारू। जी हाँ, 50% अगर उसकी फीस कम हुई है तो क्या चल रहा है। And this is the monthly fees at Kindle Garden. This is Singapore's first inclusive preschool, जो कि $1,800 होती थी सब्सिडी से पहले उसकी फीस, लेकिन मार्च से the fees have been capped at $900. At the preschool, जो कि 2016 में establish हुआ, children with special needs such as autism and cerebral palsy play side by side with neurotypical peers. April में जब ये बात हो रही थी तो वहाँ के जो chief executive हैं AWWA के, the social service agency which runs Kindle Garden, उन्होंने कहा that yearly enrollment has dropped from about 70 children to 50 children. Though the preschool operated at a deficit in the 24-25 financial year, AWWA की annual report में अगर देखा जाए, it is not the bottom line that यहाँ के CEO is concerned about. Well, वो कहते हैं कि 70-30 ratio रखते हैं हम of typically developing children to those with special needs. Fewer enrollment overall mean fewer places available for children with disabilities, even as the preschool gets inquiries for over 100 such children annually. तो उनको ये लग रहा है कि अब कम फीस की वजह से hopefully developing children जो है उनको attract कर पाएंगे और ज्यादा ज्यादा बच्चे इस स्कूल की जो special services है, special तरीका है पढ़ाने का, उसका फायदा भी उठा पाएंगे. Isn't that totally beautiful, guys? And we really hope that more and more people can take advantage of the school. Alright, we'll take Tamasha ke soundtrack se ye wale gaane ke saath mein chota sa break and come back with some more news. Ji haan, aapko pata hi hai ki Indonesia mein haal hi mein ek volcano erupt hua aur Singapore bhi impact hua. We'll talk a little bit about that right after this break. Good morning.
1: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: और आप सभी ने सुना ही होगा, पढ़ा होगा कि माउंट डुकोनो, जी हाँ, इंडोनेशियन वोल्केनो इन द ऑन द रिमोट आइलैंड ऑफ हलमेहरा इरप्ट हुआ May 8 को, और उसमें दो सिंगापुरियंस की भी मौत हुई. ऑन रेडियो मस्ती राइट नाउ आई गिव यू एन अपडेट अबाउट दिस वोल्केनो. मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज Views and a pinch. Masti. जी, मैं फैमिली की बात कर रही हूँ. ऑफ अ 29 ईयर ओल्ड हु वॉज इंजर्ड बट कुछ दिन पहले तक वॉज स्टिल वेटिंग टू बी फाउंड. फिर इंडोनेशियन रेस्क्यूअर्स दे वर एक्चुअली वर्किंग थ्रू द रेन थिक एश जो कि वोल्केनो से निकला, कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ फर्दर इरप्शंस, और सर्च चल रही थी माउंटेन्स में. और फिर ऐसा लगा कि शायद जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं जो नहीं मिल रहे हैं अब तक, वो कहीं छुपे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि उनको कोई ढूंढ ले और फिर उनको बाहर लेकर आ जाए. लेकिन हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से फिर घर वालों को जब खबर दी गई तो ऐसा लगा कि फिर भी शायद गलत बोल रहे हैं, शायद साफ साफ नहीं बता रहे हैं कि क्या हुआ है, और शायद इंसान अभी भी मिल जाएगा. ऑफ कोर्स द फैमिलीज वर सुपर डिस्ट्रॉट, पेरेंट्स, साथ ही साथ में 29 ईयर ओल्ड की टू बी फियोंसे, सभी के होप्स कुछ अलग ही थे. लेकिन एक बात की खुशी, जब उनको ये पता लगा कि अब बॉडीज मिल चुकी हैं, एक बात की खुशी उन्होंने ये सुना कि वापस टिम जो है, जो एक उन दो बॉडीज में से एक इंसान की मैं बात कर रही हूँ, वो वापस पहुँचे अपने माउंटेन पर. और उसके बाद में उन्होंने वहाँ जाकर और लोगों को मदद करने की कोशिश करी. ऑफ कोर्स चाहते तो बिल्कुल नीचे रुक सकते थे और बिल्कुल भी पीछे हट सकते थे, लेकिन ही डिसाइडेड दैट ही वॉज गोइंग अप टू हेल्प अनदर मेम्बर ऑफ द ग्रुप. और इसी बात से जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं. वो कह रहे हैं कि इस ब्रेवरी के लिए ही हम उसको जानते थे और हम बहुत ज्यादा प्राउड है कि वो वाकई वापस गया और लोगों को हेल्प करने के लिए. वेल, इट्स सुपर सैड, इट्स रियली रियली ट्रेजिक, एंड राइट नाउ इज नॉट द टाइम फॉर अस टू से कि उनको पता था ये नो गो एक्सक्लूजन जोन है, या उनको पता था कि यहां पर कुछ भी हो सकता है, क्यों गए. ये सब करने की बारी नहीं है इस समय. सिर्फ ये सोचने की बारी है कि आज वो थे, कल कोई भी हो सकता था. जस्ट बी केयरफुल, एंड यस, वेरी प्राउड इंडीड on behalf of the family as well, and on behalf of everybody, condolences to the families of the two departed souls.
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
2: RJ gaya exit par aur gaane aa gaye YouTube par. Non-stop music, non-stop musty. Only on Musty Music Cafe.
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
1: आई लव यू रसना,
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: एंड आई वुड से कि अगर कोई ऐसी फिल्म है जो कि मुझे हर हर सीक्वल देखने का बिल्कुल इंतजार रहता है, दैट इज दृश्यम. जी हाँ, तो दृश्यम 3 की बात हो जाए इस टाइम पर. बॉलीवुड की खबर, जी हाँ, ऑन रेडियो मसी 24/7 ऑन द मॉर्निंग शो. सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7. भाई, अगर हम बात करें कि दृश्यम 3 हिंदी वाली किस दिन रिलीज होनी चाहिए, तो जी आपने बिल्कुल सही पहचाना, 2 अक्टूबर को, राइट? तो चलिए उससे पहले अभी बात कर लेते हैं कि इसी वीकेंड पर ट्रेलर ऑफ दृश्यम 3 ओपन हुआ विद द वर्ड ऑफ कॉशन फॉर जॉर्ज कुटीज फैमिली. और जी हाँ, पुलिस और लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनको पता है कि सच क्या है. और भाई, जॉर्ज कुटी की जो कंट्री साइड का घर है, वहाँ मेंबर्स ऑफ द मीडिया कन्फेस करते हैं टू देयर इनएबिलिटी टू पेनेट्रेट द मैन. वो कहते हैं इनक्रेडिबली शाय है और पुलिस भी एकदम हार के साइड पर हो गई है. लेकिन पुलिस कहती है कि यार, हम बिल्कुल इस आदमी के फैंस हैं, बिकॉज सीरियसली ये हमसे कहीं आगे का सोचता है. एंड ऑफ कोर्स दिखाया गया उस ट्रेलर में दैट एज द फैमिली शेयर्स अ मील एट द डाइनिंग टेबल, जॉर्ज कुटी जो है थोड़ा परेशान है. ही इज लिसनिंग टू समथिंग ऑन हिज स्मार्टफोन. और उनकी जो पत्नी है रानी जॉर्ज, वो पूछ रही है कि भाई क्या हो गया, सब ठीक तो है, व्हाई डोंट यू टेल योर फैमिली अबाउट द एसिड. एंड जॉर्ज कुटी इज आस्क्ड ओनली फॉर हिम टू स्पिल द ट्रूथ कि नहीं, जब वो सुनेंगे कि मैंने क्या किया है, व्हाट इफ दे स्टार्ट थिंकिंग देयर फादर इज अ क्रिमिनल, मुझे तो खुद पे भी शक होने लगा है. इट साउंड्स रियली अमेजिंग बिकॉज नाउ जॉर्ज कुटी, दैट इज अजय देवगन, हमारी हिंदी की फिल्म में, ही इज एक्चुअली कन्फ्रंटिंग द घोस्ट्स ऑफ द पास्ट एंड रियलाइजिंग कि इन्वेस्टिगेशंस जो हैं फिलहाल पूरी नहीं हुई हैं. आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ एन अमेजिंग अमेजिंग फिल्म येट अगेन. बट अनफॉर्चुनेटली एटलीस्ट हिंदी बोलने वालों को तो इंतजार करना पड़ेगा 2 अक्टूबर का, जब पाव भाजी खाएंगे हम और साथ में फिल्म देखेंगे, ठीक है? All right, coming up right now, of course, Mika Singh on the vocals. थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाते हैं on a beautiful Monday morning. Renuka with you. Stay tuned.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
3: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: और इस घंटे को खत्म करने से पहले एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि भाई फॉरेन नेशनल्स को अरेस्ट किया जा रहा है, रेड पड़ रही हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग ऑपरेशंस बिल्कुल टारगेट पर हैं इस समय इंडोनेशियन कैपिटल जकार्ता में। आई विल टेल यू मोर अबाउट दैट इन जस्ट अ लिटिल बिट गाइस, स्टे ट्यून्ड।
1: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज Views and a pinch. Masti.
0: Pinch of masti to hamesha hi rahegi. After all, masti 24/7 jo hai. तो भाई जकार्ता से खबर कुछ ऐसी आ रही है कि 300 से भी ज्यादा फॉरेन नेशनल्स को अरेस्ट किया गया है इन अ रेड, एंड दिस हैज हैपेंड ऑनलाइन गैम्बलिंग ऑपरेशन में। जी हां, जकार्ता में वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट क्रैकडाउन कहा जा रहा है इसको, इलीगल डिजिटल बेटिंग नेटवर्क्स के बिजनेस में। 321 फॉरनर्स टू बी प्रिसाइस वियतनाम से उनको अरेस्ट किया, मेनली वियतनाम से उनको अरेस्ट किया गया है एट अ कमर्शियल बिल्डिंग नियर द सिटीज चाइना टाउन सेक्शन। और इन्वेस्टिगेटर्स ने बोला है कि भाई यहाँ तो 70 से भी ज्यादा ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबसाइट्स चल रही थी टारगेटिंग प्लेयर्स आउटसाइड इंडोनेशिया, एंड ऑफकोर्स मार्केटिंग के रिकॉर्ड्स, डिजिटल एविडेंस और क्या क्या मिला है उस रेड के अंदर। सो लगता है वेरी वेरी सक्सेसफुल वन। 228 Vietnamese, 57 Chinese and the rest came from Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia and Cambodia. And Director of General Crimes, जो कि Indonesian National Police में है, उन्होंने सारी reports दी और साथ में ये भी कहा कि organizers और financial backers को भी ढूंढा जा रहा है। और साथ में ये कहा कि जो suspects हैं उनको ऑफकोर्स वो जो ऑनलाइन gambling कर रहे थे और इस operation को कितना structured तरीके से organize किया गया है, इस सब को इस समय पहचाना जा रहा है, अंदर डिटेल में जाया जा रहा है। आपने इसी बात पर वो मटका, जी हाँ मटका किंग देखी है कि नहीं OTT पर? आई एम नॉट सेइंग ऑनलाइन गैम्बलिंग कीजिए या अदरवाइज कीजिए, बट या दैट फिल्म इज डेफिनेटली समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बागी के साउंडट्रैक से सुनेंगे गर्ल आई नीड यू, एंड यू गाइस डेफिनेटली नीड दिस गर्ल टू टेल यू मोर खबरें, राइट? आई विल बी बैक नेक्स्ट आवर, तब तक एंजॉय दीज टू ट्रैक्स बैक टू बैक। गुड मॉर्निंग।

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out. Josh Mehra.
3: आइए आइए, इस घंटे में आपका इंतजार कर रहे हैं हम यहाँ पर। जी हाँ, 11 मुल्कों की पुलिस तो क्या ही इंतजार करेगी जो आपका रेडियो जॉकी करता है जब एक नया घंटा शुरू होता है। रेडियो मस्ती 24/7, यस इट इज द मॉर्निंग शो एंड यस दिस इज योर गर्ल रेणुका। मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर, The Morning Show on Radio Masti 24. Time for you to get some news, views and updates. जी हाँ, from across the world. Right now, business news का time हो रहा है और AGM, जी हाँ, annual general meetings की जब बात करते हैं तो हमें लगता है यार खाओ पियो ऐश करो, क्योंकि shareholders को पटा के रखना कितना जरूरी है, right? लेकिन इस time पर जरा नजरिया बदल रहा है। More companies uploaded the minutes of their AGMs, जो कि अप्रैल में हुई, एंड ये सब अपलोड जब किया तो भाई आपको पता है कि एक ही महीने के अंदर अंदर अपलोड करने पड़ते हैं, दैट इज द रिक्वायरमेंट। फाइलिंग्स जब आ रही हैं सो बहुत सारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी डिमांड्स हैं, मार्केट वॉचर्स की डिमांड्स हैं कि भाई जो AGMs हैं इनको ज़्यादा रेलिवेंट किया जाए फॉर रिटेल शेयर होल्डर्स रादर देन जस्ट द एनुअल जनरल मकान। लॉन्ग स्टैंडिंग स्टीरियोटाइप होता है जो कि पोर्ट्रे करती हैं ऐसी मीटिंग्स को एज अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्री बुफे मील्स। जी हाँ, एनालिस्ट का ये भी कहना है कि क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ AGMs एज एन एवेन्यू फॉर कंपनी शेयर होल्डर एंगेजमेंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं, रेगुलेटर्स देख रहे हैं लिक्विडिटी एंड एड्रेसिंग द अंडर वैल्यूएशन इन द लोकल स्टॉक मार्केट। लेकिन ज्यादा AGMs जो हैं वो वीकडे मॉर्निंग्स या आफ्टरनून्स में होती हैं एंड आर क्लस्टर्ड हेवली अराउंड द अप्रैल 30th डेडलाइन फॉर कंपनीज विद डिसम्बर फाइनेंशियल ईयर एंड्स। इस वजह से जो वर्किंग लोग हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो अटेंड कर ही नहीं पाते। साथ ही में दूसरी बात है ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, मोस्टली AGMs जो हैं वो बंद रहती हैं टू द मीडिया, लिमिटिंग टाइमली रिपोर्टिंग फॉर शेयर होल्डर्स अनएबल टू अटेंड। अब इस समय OCBC और UOB रिपोर्ट कर रहे हैं अपना पहला क्वार्टर की अर्निंग, सपोर्टेड बाय राइजिंग डिमांड फॉर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। ये बात हुई पिछले हफ्ते एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन वेल्थ मैनेजमेंट ने बूस्ट करा है OCBC के नॉन इंटरेस्ट इनकम को टू अ न्यू हाई इन द फर्स्ट क्वार्टर, हेल्पिंग टू ऑफसेट अ डिक्लाइन इन इंटरेस्ट इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट्स। जी हाँ, सो बहुत सारी बातें इस समय चल रही हैं बिजनेस के एरिया में, हम और भी आपको अपडेट्स देंगे इसी शो में। Just stick around with us. It's the last hour till 10 a.m. I'm going to be with you. चलिए धड़कते दिल के लिए ये वाला गाना। Up next, Radio Masti 24/7 पर.

0: some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
3: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।

And the next खबर is coming from Seoul yet again. जी हाँ, आज के शो में हमने शुरुआत में आपको सोल की कुछ खबर लाके दी थी, बट फिलहाल के लिए नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, well, let me give you a quick update on that. Good morning on the morning show. It's Renuka with you. Serious headlines with a not so serious vibe. Only on the morning show on Radio Masti 24/7. North Korea plan कर रहा है to deploy a new type of artillery along its southern border. ऐसा पता लगा है इसी weekend पर, potentially putting Seoul within striking range as Pyongyang deepens its hostility towards South Korea. जी बात चल रही है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की इस टाइम पर ऑन द मॉर्निंग शो. डिस्पाइट पीस ओवरचर्स फ्रॉम द साउथ कोरियन गवर्नमेंट, नॉर्थ हैज रिपीटेडली कास्ट सोल एज इट्स मेन एडवर्सरी. एंड रिसेंटली सारे के सारे जो रेफरेंसेस हैं लॉन्ग स्टैंडिंग टू कोरियन यूनिफिकेशन, उसको हटा दिया गया है उनके कॉन्स्टिट्यूशन से. North Korean leader Kim Jong-un visited a munitions factory, जी हाँ, इसी हफ्ते में, to review production of a new type 155mm self-propelled gun howitzer. ये जो वेपन है, it has a range exceeding 60 kilometers और इसको deploy किया जाएगा इसी साल में to a long range artillery unit along the border with South Korea. जी हाँ, ऐसा report किया है KCNA ने. Central Seoul जो है वो 50 से 60 kilometer दूर है from the frontier and much of Gyeonggi province, South Korea's most populous home to key industrial hubs, would also fall within the range. Howitzer जो है वो प्रोवाइड करेगा सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड एडवांटेजेस टू द मिलिट्री ग्राउंड ऑपरेशंस, ऐसा कोट किया है KCNA ने रिपोर्टिंग किम एज सेइंग. नॉर्थ एंड साउथ कोरिया रिमेन टेक्निकली एट वॉर बिकॉज देयर 1950-53 कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन एन आर्मिस्टिस, नॉट अ पीस ट्रीटी. और कुछ रिसेंट सालों में ऐसा हुआ है कि प्योंगयांग ने ब्लो अप कर दी हैं रोड्स एंड रेलवेज लिंकिंग इट विद द साउथ एंड पर्पजली बिल्ट बैरियर्स नियर द बॉर्डर. सो वेल, हार्डनिंग स्टांस है नॉर्थ कोरिया. डिलीट कर रहा है सारे रेफरेंसेस टू यूनाइटिंग द डिवाइडेड पेनिनसुला फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. ये सब किसी और इशारा कर रहे हैं, ऐसी बातें चल रही हैं. Well, we really do need peace in this world. I think in the more recent times we have discovered there is a lot going on across every corner. Well, let's pray for that and take a short break here. I'll be back with some more news, this time slightly lighter news. Theek hai na? Chahiye na sabko. Good morning.

All right, let's take a look at Bollywood. And Bollywood ki khabar is samay Selena Jaitley. Ji haan, the actor, she is making headlines right now over her ongoing divorce battle with her husband Peter Haag. Baat karte hain iske bare mein in just a little bit. Serious headlines with a not so serious vibe only on the morning show on Radio Masti 24/7 पर Bollywood की खबर. जी हाँ, इस घंटे की कुछ ऐसी है कि Selena Jaitley जिनका इस समय डिवोर्स चल रहा है, वो कुछ बातें बता रही हैं अंदर की अबाउट हाउ शी इज नॉट एबल टू मीट और स्पीक टू हर चिल्ड्रन बिकॉज हर हस्बैंड इज कीपिंग देम अवे. हाल ही में Selena Jaitley ने एक वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिस पर उन्होंने कहा, आई हैव नो ऑप्शन बट टू शेयर दीज वीडियोज. आई लॉस्ट माई चिल्ड्रन द डे आई चोज टू लीव ऑस्ट्रिया टू प्रोटेक्ट माई डिग्निटी माई चिल्ड्रन एंड माई ब्रदर. और बहुत ही सुबह सुबह की बात थी, नेबर्स की हेल्प से वो चुपके से वहां से एस्केप हो पाई एंड शी एक्सपीरियंस्ड अ सिस्टमैटिक ऑपरेशन, आइसोलेशन, इमोशनल अब्यूज, ह्यूमिलेशन एंड फियर. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने लीगल प्रोसीडिंग्स भी फाइल करी हैं इंडिया में टू एक्सेस दी Only roof above my head, my own home, जो कि मैंने अपने पैसों से खरीदा था 2004 में, और इसलिए मुझे लीगल हेल्प की जरूरत है क्योंकि मेरा भाई भी डिटेन हो चुका है मिडल ईस्ट में. माई चिल्ड्रन हैव बीन ब्लॉक फ्रॉम स्पीकिंग विद मी. ज्वाइंट कस्टडी अरेंजमेंट्स और सबसिस्टिंग ऑर्डर्स के होते हुए भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है विद माई थ्री चिल्ड्रन. Selena Jaitley ने हाल ही में ये भी कहा दैट शी हैज़न्ट कम्युनिकेटेड विद हर किड्स बिकॉज दे हैव बीन ब्रेन वॉश्ड अगेंस्ट हर. मेरे बच्चे जो हैं उनको अनडिस्क्लोज लोकेशन पर भेज दिया गया है, ब्रेन वॉश हो रहे हैं, रेडिकलाइज हो रहे हैं अपनी माँ के अगेंस्ट और हिंदुइज्म के अगेंस्ट बाय द हस्बैंड एंड द फादर. साथ ही साथ में ये भी कहा कि दो हफ्ते पहले उनकी कुछ डिवोर्स हियरिंग्स हुई थी ऑस्ट्रिया में एंड शी वॉज आउटसाइड हर ओन हाउस नॉट बींग अलाउड टू एंटर. And of course, not being able to meet her children. Well, whatever the truth is, we certainly hope that it prevails, right? चलिए अच्छा सा गाना, खुशी वाला गाना हो जाए इस टाइम पर ऑन रेडियो मस्ती. Followed by another बड़ा ही बढ़िया धुरंधर का गाना. ठीक है, दोनों साथ साथ सुनते हैं रेडियो मस्ती 24/7. Cheer up for the week ahead, guys. This is Renuka with you on the morning show. Josh,

0: A quick look at British news. जी हाँ, right now आ रही है जो लंदन से खबर, उसको देखते हैं before I take your leave for the day, guys. Radio Masti 24/7 पर चल रहा है The Morning Show.
1: Monday Coffee का best partner. The Morning Show on Radio Masti 24/7.
0: British Prime Minister Starmer, जी हाँ, he's reeling from a crushing local election defeat, faced a new setback to his leadership इसी वीकेंड पर, जब एक former minister ने कहा that she would challenge him for the top job if no one else stepped forward. Mr. Starmer है Labour Party के leader. He recorded the worst losses of a governing party in municipal polls since 1995, prompting a growing number of his own lawmakers to call on him. चले जाओ. To try to shore up his position in the party earlier, May 9th पर कुछ ऐसा हुआ, he named two influential Labour grandees as advisors, former Prime Minister Gordon Brown and former Deputy Labour leader Harriet Harman. बट कुछ ही घंटों में लेबर लॉ मेकर कैथरीन वेस्ट, जो एक फॉर्मर मिनिस्टर रही, उन्होंने मीडिया में अनाउंस किया दैट शी वांटेड द कैबिनेट टू वर्क आउट अ प्लान टू रिप्लेस मिस्टर स्टार्मर. मे 11th तक शी वुड चैलेंज हिम फॉर द पोजीशन हरसेल्फ, अगर ये नहीं हुआ. और अगर कोई लीडरशिप होपफुल्स नहीं है जो वापस बाहर आएंगे, जी हाँ, आज दैट इज मंडे मॉर्निंग तक, तो अपना नाम आगे रखेंगी फॉर द स्टैंड ऑफ द लीडर ऑफ द लेबर पार्टी. जी हाँ, ये कह रही हैं कैथरीन वेस्ट, जो एक एमपी हैं. वेल, एज द एक्सटेंट ऑफ द डिफीट इमर्ज, मोर देन 20 लॉ मेकर्स पब्लिकली एंड प्राइवेटली कॉल्ड ऑन मिस्टर स्टार्मर टू सेट आउट अ टाइम टेबल फॉर हिज डिपार्चर. अब क्या होगा ब्रिटिश लीडरशिप का, ये तो आज के दिन में काफी कुछ पता लगेगा हमको. वेल, ही ऑब्वियसली सेड दैट ही इज नॉट गोइंग टू वॉक अवे, एंड एट द सेम टाइम नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, जी हाँ, इस वीकेंड पर उन्होंने कहा कि वो सपोर्ट करते हैं मिस्टर स्टार्मर को, हु जस्ट अंडर 2 years अगो लेड लेबर टू landslide national election victory and an immediate challenge from the potential leadership rivals does not look very straightforward. Well, British leadership zara upar niche hoti hi rahi hai in the past few years, isn't it? Chaliye, we'll continue to rock the airwaves with some rocking ganas. Let's stay tuned. Yeah, I'll come and say my goodbye in just a little bit, guys. Jana mat kahin bhi. Good morning.

0: हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं
1: once more.
0: और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं. Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.

All right, and on radio, Masi guys, time for me to say bye bye to you. But not before I tell you, भाई मैंने mangoes experience करे. जी हाँ, जी जी मार्ट के mangoes experience करे. देवगढ़ and रत्नागिरी. ओए होए होए होए. मैं कहती हूँ, ज़िंदगी बन गई boss. Serious headlines with a not so serious vibe. Only on the morning show on Radio Masti. Radio Masti 24/7 पर. जी हाँ, रेनुका विद यू. सुबह 7 बजे से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ. इस समय मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई जा तो मैं रही हूँ और बाकी के लोग भी बिल्कुल तैयार हैं. जी हाँ, मुग्धा तैयार है अपने शो के साथ में और साथ ही साथ में अंतरा जी शाम को भी तैयार हैं बिल्कुल अपना मस्ती वॉइस आपकी चॉइस करने के लिए. और भी बड़ा कुछ हो रहा है यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है आम जीजी मार्ट के ओए होए. No guys, I'm not kidding. Seriously, मैं ट्रैवल कर रही थी जैसे कि आप जानते हो पिछले हफ्ते, और वापस आते ही मैंने सबसे पहले उनको बोला, देखिए मेरे घर में रत्नागिरी और साथ में देवगढ़ दोनों के दोनों आम भिजवा दो. तो वो आ गए जी. और उसके बाद तो मेरी निकल पड़ी. मैंने कहा यार, मतलब why did I not taste these earlier? Because इतनी गारंटी हो रही है कि इंडियन मैंगोज मजाल है, इनमें कोई अच्छा ना निकले. एक एक चुन चुन के जो कि डब्बे आए हैं, ओए होए, मतलब उन्हें काटो और ऐसा लगता है कि उफ, दिस इज द रियल आम. And you know what? They guarantee कि ये organic हैं, and definitely the taste of each one of them is real stuff. No preservatives, nothing at all. इसीलिए बस मंगवाओ और खाओ और खूब ऐश करो. All right? So well, if you've not done it, then I do insist ggmartonline.com पर आप जाइए and definitely अपने आम के boxes. If you feel that it's you know too many 12 आम in one box, too many for you, then why don't you actually ask your friends and share. All right, एक जगह मंगवा लो, उसके बाद बांट लो, पैसे भी अपने आपस में बांट लो अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं इतने पैसे नहीं देने हमको. ठीक है ना, सोल्यूशन हर जगह होता है. बट डोंट रियली मिस द मैंगो सीजन. एंड आई टेल यू फ्रॉम जीजी मार्ट ऑनलाइन, बिल्कुल भी मिस मत करो. ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक. ऑन दैट नोट हम चलते हैं यहाँ से और आपको विश करते हैं बहुत ही बढ़िया सा हफ्ता. एंड आई डू होप दैट यू गाइस हैव अ वेरी प्रोडक्टिव वीक अहेड, स्माइलिंग वीक अहेड. ऑल द गुड न्यूज इन द वर्ल्ड कम्स टू यू. एंड ऑफ कोर्स अपने बेस्ट विशेज में हमें भी याद रखना. ऑलराइट, ऑन दैट नोट, बाय फॉर नाउ एंड आई लव यू ऑल.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
2: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
3: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे
2: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
6: मुझे चांद पे ले चलो।
5: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
7: रात

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
3: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
4: ऑल इज वेल।
3: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
5: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
6: चेक इट आउट।
7: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hey, what's up, public? मैं हूँ मुग्धा आपके साथ और आप सुन रहे हो MHO, the Energy Hub. अरे बॉस, मैं हूँ आपके साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, the one and only हिंदी रेडियो स्टेशन ऑफ सिंगापुर. आज पता है क्या, आज है 11th मई, मंडे की सुबह है, मतलब मंडे का दिन है, पर टेंशन को क्या कहेंगे हम, बाय, क्योंकि आज है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जिसने हमारी बहुत सी टेंशन्स को दूर करके लाइफ को थोड़ा आसान बनाया. मतलब आज अपने ब्रेन का जो सर्वर है उसको रीसेट करो और क्या करोगे, फुल स्पीड में डाउनलोड करो ओनली एंड ओनली चिल वाइब्स एंड हैप्पीनेस. और सुनो, टेक्नोलॉजी साइड में रख दो, आज पता है क्या है, ईट व्हाट यू वांट डे. जी तो डाइट तेल लगाने गई है या तेल लेने भेज दो, फर्क ही पड़ता है, सिर्फ पेट पूजा हो

तैयार हो जाओ फॉर अ पावर पैक्ड राइड मुग्धा के साथ. वॉल्यूम बढ़ाओ क्योंकि मस्ती हैंग आउट पे आज सिर्फ बैंगर्स बजेंगे, क्योंकि मैं बैंगर्स बजाऊंगी. स्टे कनेक्टेड.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: ओहो, ब्रेक के बाद स्वागत है, मैं हूँ मुग्धा और आप सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट, जहाँ पे गॉसिप कोल्ड हो सकती है पर एनर्जी हमेशा गर्म रहती है। हार्ड बॉस, एक रिपोर्ट आई है और उसको सुन के मेरे तो होश उड़ गए हैं। सिंगापुर ने 2025 में टूरिज्म से 32.8 बिलियन डॉलर्स छापे हैं। जी, 32.8 बिलियन डॉलर्स, मतलब इतने जीरोस हैं। मैं कैलकुलेट कर रही थी, मेरे कैलकुलेटर का एरर। सोचो, ऐसा लग रहा था पूरा वर्ल्ड सिंगापुर आ गया चांगी एयरपोर्ट पे और रील्स बना रहा है, और हम भी यही है पर हम स्टूडियो में है, हमें नहीं पता कौन कहाँ क्या कर रहा है। पर कुल मिला के हमारे सिंगापुर ने दबा के नोट छापे हैं डॉलर में। मैं यहाँ पे ऐसे मुंह बना के बैठी हूँ, नहीं यार आपसे बातें कर रही हूँ, खोज खबर ला रही हूँ आपको सुनाने के लिए, ताकि लोग एंजॉय करते रहे और आप वहां कहीं नहीं जाके भी एंजॉय करें। भाई लोग सिंगापुर आ रहे हैं पर कुछ लोग नहीं भी आ सकते, तो जो जहाँ है वो एंजॉय करे, है ना, मेरी बातें सुन के, क्योंकि आप मुझसे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो हमारे रेडियो ऐप के थ्रू, जो कि बहुत इजीली आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, समझे। तो चलिए, अगर आप सिंगापुर नहीं आए तो क्या हुआ, हम पूरा सिंगापुर आपके पास।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: की बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: What's up पब्लिक, सिंगापुर में है, सिंगापुर की बातें हो रही हैं। मैं हूँ मुग्धा और बस यहाँ सिंगापुर में सिर्फ पैसा नहीं, प्यार दिखाना भी आपको महंगा पड़ सकता है। जो लोग अभी अभी सिंगापुर आए हैं या सिंगापुर शिफ्ट हुए हैं या स्टिल दे आर नॉट अवेयर ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज ऑफ सिंगापुर, आपको बता दूं सिंगापुर में इलीगल वाइल्ड लाइफ फीडिंग पे एक नया रूल आया है। अगर आपने किसी बंदर या किसी वाइल्ड बोर को अपना पराठा या चिप्स खिला दिया या इवन बनाना भी खिला दिया तो बनाना लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, रिपीट ऑफेंडर्स को सीधा जेल हो सकती है और वहां आपको बनानास ही मिलेंगे। मतलब आओ आओ ऐसे बोल के ना बिस्किट देना बहुत भारी पड़ेगा। लोग कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती, पर सिंगापुर गवर्नमेंट ने ना बाउंड्री वॉल खड़ी कर ही दी है फाइनली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जेल में ना कोई मंकी बिजनेस नहीं चलेगा, मतलब मंकी बिजनेस नहीं चलेगा। इसीलिए कहती हूँ वाइल्ड लाइफ को वाइल्ड ही रहने दो, अपने बिस्किट खुद ही खाओ, उनके लिए उनके अपने हैं। Enjoy their biscuits, okay?

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज्म मिलेगा। Only on Musti Hangout with RJ Mugdha. Radio Musti 24/7 Live. Radio Musti 24/7 Live.
4: Oh my gosh. देखिए वैसे तो सिंगापुर का वेदर जो है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। कल बारिश, आज धूप, धूप गर्मी, गर्मी धूप, धूप बारिश गर्मी, ऐसे चलता रहता है। लेकिन एक चीज है जो इस सीजन में आती है, दैट आर मैंगोज। देखो गिरे हुए मैंगोज मत उठाना, मैंने आपको पहले भी बोला था लास्ट वाले शो में, गिरे मैंगोज उठाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन यहाँ जिन मैंगोज की बात हो रही है वो ऐसे हैं जो इस सीजन में, किसी भी सीजन में, इनफैक्ट इंडिया में गर्मी के सीजन में राहत दिलाते हैं। एसी नहीं तो क्या अल्फोंसोज ले लो, है ना। मुग्धा को आप सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट पे। एंड देखो राजा, राजा मतलब राजा, राजा द किंग ऑफ फ्रूट्स, राजा मेरे हाथ में है, राजा द राजा मैंगो। जी जी मार्ट वाले ना लेकर क्या है, फ्रेश देवगढ़ और रत्नागिरी अल्फांसोज, सीधा फार्म से आपके डोरस्टेप तक। बीच में किसी और ने हाथ लगा जरूर दिया होगा, लेकिन सीधा किसान ने तोड़े हैं, बक्सिम बंद किया और सीधा आप ही खोलोगे उसको, बीच में और कहीं नहीं खुलेंगे, समझे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ना, तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करेंगे। कैसे, फोन उठाइए, ggmartonline.com पे जाइए एंड बॉक्सेस ऑर्डर करिए। देवगढ़ मिल रहा है जस्ट $39 में और रत्नागिरी है जस्ट $35 में। और सुनो, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे रही हूँ, तो स्पेशल ट्रीटमेंट इज न्यू 10, दैट्स NEW 10। ये है फ्लैट 10% डिस्काउंट की चाबी। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये चाबी जो है आपको लॉक कोड में डालनी पड़ेगी, न्यू 10, इजी है ना। बस इसके अलावा कुछ लोगों के लिए और स्पेशल ट्रीटमेंट, अगर आप जीजी मार्ट की वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं और रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट भेजते हैं हमारे नंबर पे, दैट इज 9151896 3 पर, यू नो व्हाट, आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स और मिल जाएंगे। जी तो एक तरफ तो है न्यू 10 जो अपना लॉ लगा ही रहे हैं, न्यू 10 हमारे पास भी है। रजिस्ट्रेशन करो, स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पे भेजो और स्पेशल ऑफर ले जाओ।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hey, hi, शो के दूसरे आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज मी मुग्धा और हम आ चुके हैं द बैंगिंग बॉलीवुड एंड द हॉलीवुड आवर में, यानी कि एंटरटेनमेंट वाले आवर में। आपको पता है हमने टेक्नोलॉजी की शुरुआत, मतलब टेक्नोलॉजी से बात की शुरुआत की थी आर की, और हॉलीवुड से कैसी खबर आ रही है कि ह्यूमन एक्टर्स ने चैन की सांस ले ली है। तो हुआ क्या है, गोल्डन ग्लोब्स ने अनाउंस किया है कि AI एनहांस्ड परफॉर्मेंसेस तो एलिजिबल हैं, पर फुल AI एक्टर्स बिल्कुल नहीं। ताली बजा लीजिए। मतलब आप AI से रिंकल्स हटाओ, डार्क सर्कल्स छुपाओ या अपनी एक्टिंग पॉलिश कर लो, चलेगा। पर अगर आप सोचो कि सिर्फ hey Siri, hey Alexa, इनको हीरोइन बना के आप बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ले जाओगे, नाउ बॉस, पिक्चर तो पूरी बाकी रह जाएगी, कुछ नहीं होगा। रेड कार्पेट पे रोबोट्स नहीं चाहिए, इमोशन चाहिए होते हैं। वैसे देखो, टेक्नोलॉजी की बात अगर हो ही रही है तो आप मेरी वॉइस सुन के बताओ, क्या आपको कोई शक है कि मैं AI हूं कि मुग्धा?

0: देखो भाई, मुद्दा एक ही है, मेरी आवाज कॉपी कर सकते हो, मेरा एटीट्यूड नहीं है ना।
1: जोश में रहो। A future man.

0: साला।
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Once again, what's up, public? This is me, Mugdha, और आप सुन रहे हैं मुझे on Radio Masi 24/7 Live। हमारी अपनी देसी गर्ल, उन्होंने हॉलीवुड में अपने झंडे गाड़ दिए जो कि वो बहुत सारे ले गई थी बॉलीवुड से। अभी हम AI और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे ना, सुनिए, प्रियंका चोपड़ा जोनस इज ब्रिंगिंग अ रियल लाइफ रीसेट। टेक्नोलॉजी में होता है ना रीसेट बटन। शी इज एक्चुअली लीडिंग अ ब्रांड न्यू हॉलीवुड सर्वाइवल थ्रिलर, और आपने बिल्कुल सही सोचा है, नाम है रीसेट। आपको पता है हीरो कौन है? ऑरलैंडो। यस, बजाओ बजाओ सिटी बजाओ। कान से खबर आई है कैंस फिल्म फेस्टिवल से कि कैन से खबर आई है कि पीसी इज गोना प्ले अ मदर ऑन अ मिशन। और मुझे लगता है कि पीसी इज द ओनली वन जिनको पता है कि हाउ टू सर्वाइव इन हॉलीवुड बीइंग अ मदर, है ना। जहां पे लोग सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वहां पे हमारी पीसी झंडे गाड़ रही हैं बीइंग अ मदर। यही तो खासियत है हमारी पीसी की। It's all about

0: ढूंढ गूगल पे जाके।
1: ओह माय गॉड माय पीसी। एक मेरा ये पीसी जो मेरे डेस्कटॉप मेरे टेबल पे पड़ा रहता है, एक हमारी वो पीसी जो एक जगह टिक नहीं रही है, ऐसी मत टिको पीसी, चलते रहो।
2: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
3: Check it out.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेल, अब वक्त है थोड़ा स्पाइस ऐड करने का। सुन लो, क्या है ना कि भैया मुग्धा की गॉसिप ठंडी हो सकती है पर न्यूज हमेशा सिजलिंग होती है। गॉसिप तो ठंडी होने के लिए होती है। प्रियंका चोपड़ा के हॉलीवुड सर्वाइवल के बाद अब हम बात करेंगे हमारी कावालिया, हमारी हॉट, नॉट एक्चुअली हॉट, द वेरी ब्यूटीफुल तमन्ना भाटिया की। शी इज बैक इन द न्यूज। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तमन्ना जो है, शी इज ऑल सेट टू रोमांस विद आयुष शर्मा इन रागिनी 3। अरे थोड़ा तो एक्साइटमेंट दिखाओ यार, आयुष नहीं तो रागिनी के लिए दिखा दो, है ना। अरे हाँ भाई, आयुष है सलमान के भाई, सलमान भाई के साले, ये हुई ना बात। अब बजे ना सीटी बजानी थी सलमान भाई के बात। मतलब एक तरफ होंगे आयुष और उनकी एनर्जी, और एक तरफ होंगे हमारी तमन्ना और उनका ग्लैमर। तो आयुष की ये तमन्ना भी तमन्ना पूरी कर ही रही है। हर किसी की तमन्ना है कि एक बार तमन्ना उनके साथ ग्लैमरस अंदाज में नजर आए, तो तमन्ना कितनों की तमन्ना पूरी कर रही है, क्या बात है। ये फिल्म वैसे तो एक हॉरर थ्रिलर है, तो तमन्ना का आना मतलब ग्लैमर का अपनी आप आना। थ्री इडियट्स का डायलॉग है ना, क्या नॉलेज है तो जॉब या पैसे अपने आप आ जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही तमन्ना तो ग्लैमर अपने आप आए। लाने की जरूरत नहीं। जय हो।
2: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: बॉलीवुड है और टेक्नोलॉजी का रिश्ता है, ऐसे मत करो, बॉलीवुड का टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा रिश्ता है। यू नो व्हाई? बिकॉज बॉलीवुड में रीसेट का बटन सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, कास्टिंग से भी दबाया जाता है। इफ यू रिमेम्बर 2007 में एक पिक्चर आई थी, सलाम इश्क इश्क इश्क, जिसने कितने दिल तोड़े थे गानों की वजह से। फिल्म तो बड़ी प्यारी है ना, तो अब उसका सीक्वल आ रहा है, तैयारी शुरू हो चुकी है, और देयर इज अ ट्विस्ट। यस, यही तो आया है रीसेट का बटन। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस बार सलमान खान नहीं बल्कि हमारे खिलाड़ी अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आने वाले हैं। मतलब कहना कि प्रेम की जगह पे खिलाड़ी आ रहे हैं इस बार इश्क लड़ाने। बस सलमान के फैंस थोड़े अपसेट हो सकते हैं, पर अक्षय की एनर्जी उफ, प्रेम मिला देगी भाई। मुझे बस ये देखना है कि अक्षय इस बार सलाम करते हैं या सीधा एक्शन मोड में आएंगे।
2: सलाम इश्क इश्क इश्क, सलाम इश्क, सलाम इश्क इश्क इश्क, सलाम इश्क।
1: वैसे इस इश्क वाला सीक्वेंस के साथ, आई मीन सस्पेंस के साथ, फिलहाल एक ट्रैक हो जाए, है ना?
3: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page.

0: बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: इफ यू रिमेम्बर, हम सिंगापुर के बिलियंस की बात कर रहे थे ना, पर यहाँ पे एक ही प्लेट में करोड़ों निकल के आ रहे हैं, पूछिए कैसे। एक खबर आई है और सुन के मतलब मेरे तो वो होश उड़ गए, मैं तो होश में ही नहीं थी, भूख मेरी उड़ गई, होश तो छोड़ो। एक इंडियन लेडी ने US ट्रिप पर सिर्फ 3 डोसे खाए, जस्ट 3 डोसास, और आपको पता है बिल कितना आया? $5,300। साउंड इफेक्ट अपनी तरफ से ऐड कर लेना। देखा जाए ऑन एवरेज अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो 4.5 लाख रुपए, इतने में ना आप एक साल तक रोज डोसा डिलीवरी ले सकते हैं और साथ में एक छोटी मोटी कार तो खरीद ही सकते हैं, आती है ना। वो एक बात बताओ, डोसा के अंदर क्या था? सोना, हीरे, मोती? पता नहीं, ये तो नहीं पता, पर बेचारी लेडी फाइनेंशियल एंग्जाइटी हो गई उसको तो। सच में यार, ये डोसा था कि मतलब कोई एक्सपेंसिव स्टॉक या कुछ, क्या था ये, कोई पोर्टफोलियो था, क्या बेच रहे हो भाई? ओ पब्लिक, आपने खाएगा भी इतना महंगा डोसा? महंगा डोसा एक नई रेसिपी जाननी चाहिए, मसाला डोसा, रवा डोसा, ये डोसा वो डोसा, महंगा डोसा क्यों? ये US वाला डोसा है।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजी मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, वेलकम बैक, दिस इज मी मुग्धा और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट पर। आज टेक्नोलॉजी डे पे हमने टेक की अच्छी अच्छी बातें करी है ना, बहुत सारी बातें करी है, पर एक डिजिटल धोखे वाली न्यूज आपको देती हूँ। इजिप्ट से एक ब्लॉगर की कहानी आई है, सोशल मीडिया पर हीरो बन के घूम रहे थे। इन्होंने ना कैंसर के नाम पे लोगों से मिलियंस ऑफ डोनेशंस कलेक्ट कर लिए, पर ट्विस्ट सुन के ना आपका दिमाग घूम जाएगा, भरोसा उठ जाएगा लोगों के मदद करने से। कैंसर फेक था भाई जी। ओह नो, मेरे पास साउंड इफेक्ट्स कभी है तो मैं खुद ही गा लेती हूँ। लोगों के इमोशंस और उनकी पॉकेट दोनों से खिलवाड़ किया इन्होंने। मिलियंस खाने डकारने के बाद जनाब ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। क्यों पचा नहीं? देखो भैया, टेक्नोलॉजी एक हथियार है, आप इसे किसी की हेल्प के लिए इस्तेमाल करो या किसी को लूटने के लिए, चॉइस आपकी है। पर याद रखना, लॉ का जो डंडा है ना भाई, बहुत जोर से पड़ता है, बहुत जोर से। पकड़ में तो आ गए, अब इस डिजिटल फ्रॉड से बचने का एक ही रास्ता है, बी अलर्ट और

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, देखो टेक्नोलॉजी की बातें, नई नई अजीबो गरीब बातें, पर आज टेक्नोलॉजी टेप ना सिर्फ धरती पे नहीं आसमान में भी जादू हो रहा है, मैजिक। कनाडा से ऐसी फोटोज आई हैं कि लोगों ने एलियन एलियन जादू जादू ऐसे चलाना शुरू कर दिया। आसमान में ना अजीब से कोन शेप की लाइट्स थी, वो चमक रही थी, काश मैं आपको दिखा पाती। सबको लगा कि यूएफओ आ रहा है, इसमें से नीला जादू निकलेगा। नहीं, एक्सपर्ट्स ने कहा रुको जरा, सबर करो, ये एलियंस नहीं है, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है। स्पेसएक्स के रॉकेट जब स्पेस में जाते हैं तो ये जेलीफिश जैसा ग्लो करते हैं, समझे? आई नो, उम्मीदों पर पानी नहीं, पूरी की पूरी जेलीफिश बिखेर दी मैंने। एलियंस नहीं, हमारे मस्क जी का चमत्कार है वो, समझे? टेक्नोलॉजी है वो, और टेक्नोलॉजी है तो सब मुमकिन है। इसका मतलब एक दिन एलियंस भी आएंगे, ये भी मुमकिन है, और तब उनको देख के हम कहेंगे अच्छा आप आ रहे हैं क्या, इतनी बार हमने इंतजार किया। वो कहते हैं ना भेड़िया भेड़िया भेड़िया जब आता है तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, एलियन एलियन एलियन जिस दिन आएगा

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी? जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन .com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: सारी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: अरे बॉस, टाइम फ्लाइज, उड़ता है, सच में उड़ता है। एंड टाइम फ्लाइज व्हेन द वाइब इज हाई। मैं हूँ मुग्धा और अब वक्त हो चला है आपको टाटा बाय बाय कहने का। आज हमने सिंगापुर के बिलियंस से लेकर महंगे डोसाज और कनाडा के एलियंस तक की सैर कर ली। पर याद रखना, नेशनल टेक्नोलॉजी डे है तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने वाली बात। जल्दी से फोन उठाइए 9151893 पर, अपने मन की बात मुझे लेकर भेज दीजिए। मन की बात बड़े काम की चीज होती है, जिसने जिसने मन की बात पे ध्यान दिया सबका भला हुआ है। समझ रहे हो ना प्यारी, समझ गई। देखो भाई, खाओ पियो चिल मारो, क्योंकि आज ईट व्हाट यू वांट डे है ना। और मैं तो हमेशा ही ईट व्हाट यू वांट मनाती रहती हूँ, पर आज स्पेसिफिकली इस दिन का अलग से लूंगी मेन्यू अपने खाने की, बर्गर्स और मोमोज एंड ये एंड वो सब एंजॉय करो। मस्ती तो यहाँ पे चल ही रही है, सुनते रहो, स्टे एनर्जेटिक, स्टे रियल। अगली बार हम फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम एनर्जी के साथ इन अ न्यू शो। दिस इज मी मुग्धा साइनिंग ऑफ एंड कीप वाइबिंग मुग्धा स्टाइल में। बाय बाय।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: अला रे अला सिम्बा अला

Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे। अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा।
2: हाँ जी जी।
1: 1/2 केजी मसूर दाल।
2: जी जी।
1: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
2: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाह जी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
4: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। से आता है ना तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश, योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म। यू सी, ट्यून इन टू मी ऑन मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
3: अर्जुन आएंगे
0: न? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: I love you, रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्ता रफ्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे।
1: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
2: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है
2: तुमको लेकर
1: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है
3: मुझे चांद पहले चलो
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
4: रात अकेले है
5: जोश में रहो
6: Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
7: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
0: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: आएंगे
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
3: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
2: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
3: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
4: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
5: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: किन्निया किन्निया गल्ला वे तू करदा है।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो।
1: मजेदार बात ये नहीं है कि इस वक्त कहीं से चाय का इंतजाम नहीं हुआ है, मजेदार बात ये है कि जब आपके पास चाय नहीं होती है तो आप ब्लैक कॉफी पर्सन बन जाते हो। इट्स वेरी वियर्ड बिकॉज आई फील वियर्ड एट टाइम्स अबाउट दिस। वेलकम वेलकम नमस्ते गुड इवनिंग। यस इट्स मंडे वाली शाम। यस एंड दैट इज राइट मस्ती वॉइस आपकी चॉइस जो है बिल्कुल शुरू हो चुका है। मैं हूँ अंतरा आपके साथ एंड बिल्कुल रहने वाली हूँ 8 बजे तक। हाउ है been कैसा रहा है ये जो दिन है मंडे वाला? हाउ वॉज इट टेल मी हाउ क्रेजी वॉज इट और वॉज इट लाइक सुपर प्रोडक्टिव यू वर लाइक टेल मी समथिंग नाइस एंड पॉजिटिव। कहो कि यार बहुत ही कमाल गया, मैं बहुत बिजी रहा हूँ या रही हूँ और बहुत ही मतलब एफिशिएंट और एफिशिएंसी के साथ काम किया हुआ है। गिव मी ऑल द पॉजिटिविटी व्हाटएवर यू हैव शेयर इट विद मी शेयर इट विद मी। माई डे हैज बीन कम्प्लीटली केओटिक एंड It's okay because हम सारे ही you know we all are humans, all our days cannot be the same। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई किसी से कि मैं तो हमेशा ही ऐसी एकदम बबली सी चर्पी सी जोशीली सी नहीं ऐसा नहीं होता है। बट वेल इसी के साथ साथ जो है जब ये शाम वाला जो है टाइम शुरू होता है तो यहाँ पे हमारी बातें शुरू हो जाती हैं और आपके अच्छे अच्छे गाने जब मैं यहाँ पे प्ले करती हूँ रिक्वेस्ट किए हुए इट जस्ट बिकम्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो वेल सो नाउ इट इज ऑन यू टेल मी कि भाई क्या सुनने का आपका मूड है। यहाँ पे हमारी कविता दी जो है ऑल द वे फ्रॉम इंडिया शी हैज ट्यून्ड इन एकदम परफेक्ट टाइम पर। मिस अतवारो इज ऑल्सो ओवर हियर। धीरे धीरे करके हमारा ये समा और हमारे सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स यानी कि आप बिल्कुल यहाँ पे जुड़ते हुए जा रहे हैं एंड वी ऑल विल मेक श्योर दैट वी हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग अहेड। सो आओ मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता ऐसा इस गाने में शान और सुल्तान खान साहब जो है वो गा के हमें बताना चाहते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून्ड विद मी क्योंकि अभी हमारी मंडे वाली पार्टी शुरू हुई है।

0: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti, subah 6 baje se.
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
3: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। यू से वी प्ले।
4: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस जो है आप सुन रहे हैं। 5 बजकर हो चुके हैं 19 मिनट यहाँ पर। एंड भाई हमारे एसएस राजा मौली साहब जो है ही इज प्लानिंग समथिंग रियली आइकॉनिक। आई मीन व्हेन आई टॉक अबाउट कि वो डायरेक्टर्स जो बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाकर सोचते हैं, उनको हर डिटेल भी परफेक्ट चाहिए होती है। वन इज ऑफकोर्स हमारे SLB विच इज संजय लीला भंसाली सर, और दूसरा आई थिंक ये भी एस शुरू होते हैं SS राजा मौली सर। सो फिल्म मेकर हमारी ये जो है इनकी एक मूवी आने वाली है विच हैज प्रियंका चोपड़ा इन इट, इफ यू नो अबाउट इट। वाराणसी नाम है उसका। एंड ही हैज रिक्रिएटेड द आइकॉनिक घाट्स ऑफ वाराणसी ब्रिक बाय ब्रिक, मतलब कि टू मच डिटेल ही हैज गॉन इनटू। सो महेश बाबू एंड प्रियंका चोपड़ा इस मूवी में हमको नजर आने वाले हैं। देयर इज द मैसिव सेट व्हिच हैज बीन बिल्ट इन हैदराबाद टू कैप्चर द स्पिरिचुअल एंड द कल्चरल एटमॉस्फेयर वाराणसी का विद द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑथेंटिसिटी, दैट्स व्हाट इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड कहा जा रहा है। नाउ द टीम जो है वो रिक्रिएट कर रही है जो घाट्स हैं काफी रिसर्च के बाद एंड डिटेल्ड मेजरमेंट्स के साथ, एंड दे कलेक्टेड अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस फ्रॉम द रियल सिटी। तो धीरे धीरे करके कि जब लोग देखें तो उनको डिफरेंस नहीं समझ में आए। नाउ दिस ग्रैंड सेट अपेरेंटली इंक्लूड्स द घाट्स एंड द टेंपल्स एंड द रिवर फ्रंट्स एंड द नैरो वो छोटी छोटी पतली पतली गलियां, एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिकॉज सेवरल लार्ज स्केल सीन्स जो है कुड नॉट बी प्रैक्टिकली फिल्म्ड इन द लाइक रियल वाराणसी के उसमें। सो वाराणसी इज among India's most anticipated upcoming films and ऐसा कहा जा रहा है कि भाई रिलीज होगी 2027 तक। जब इतनी सारी बातें किसी फिल्म के बारे में हम सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि wow, like really wow। So देखते हैं हमें तो 2027 तक का बस इंतजार ही करना है, एंड लेट्स सी दैट व्हाट दिस एपिक एपिक थिंग इज गोइंग टू टेक शेप एज एंड बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ अस। समहाउ आई हैव अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट दिस, आई डोंट नो व्हाई, बट देन आई हैव इट। लेट्स सी वेदर माय फीलिंग प्रूव्स टू बी राइट और रॉन्ग, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि यहाँ पर श्रेया जो फील कर रही है वो बिल्कुल मैं 110% प्ले कर सकती हूँ। सो भाई हमारी पहली चॉइस श्रेया बिल्कुल अरिजीत सिंह का ये जो गाना है विच इज अ वेरी अंडररेटेड गाना श्रेया, बहुत कम लोगों को मैंने ये गाना रिक्वेस्ट करते हुए सुना है। सो इट्स योर चॉइस, इट्स लिसनर्स डे। या तो हियर यू गो, दिस इज फ्रॉम द मूवी मिकी वायरस ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Radio.
1: Traffic update.
2: That's right, it's the time for a traffic ka update. 5:30 बज चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर यहाँ पर आपके साथ और सीधा चलते हैं, जानते हैं क्या है सड़कों का हालचाल. हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स टुवास बिटवीन BKE एंड थॉमसन रोड. एक ऑब्स्टिकल की खबर ऑन AYE टुवर्ड्स टुवास आफ्टर बोनाबिस्ता, अवॉइड करें लेन नंबर 3. और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन CTE टुवर्ड्स SLE बिटवीन जलान बहागिया एंड मर्चेंट रोड. सो वेल, ये था ट्रैफिक अपडेट ऑफ द आवर. War. And by the way, आज से एक बहुत ही कमाल शानदार चीज जो है बिल्कुल ऑन एयर शुरू होने वाली है. सी द क्रिकेट कॉर्नर के बारे में तो आपने सुना ही होगा. सो मस्ती AVI पर हमारे जो पैनलिस्ट है, तीन क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, जितेश, संतोष एंड नील, ये लोग हर मंडे और फ्राइडे को ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म हमारा जो है मस्ती AVI वहां पर आते हैं एंड डिकोड करते हैं IPL के जो गेम्स फिलहाल चल रहे हैं. बट आज शाम से 7 बजे ऑन एयर भी जो है आपको मिलेगा बिल्कुल IPL का अपडेट, लाइक एवरी इवनिंग 7 PM onwards. इफ यू ट्यून इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट द अपडेट देन एंड देयर एंड दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. सो मेक श्योर दैट यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद दैट एज वेल. इसी के साथ मेरे को वापस से यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है, ये बड़ा सही रहता है. ठीक है, मस्ती वॉइस आपकी चॉइस में मैं कहती हूँ कि भाई मुझे अपना रिक्वेस्ट बता दो 9151893 पर. मुझे पलट के मिस अखबारो कहती है आज तुम प्ले करो जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें लगता हो कि मुझे पसंद आ जाए. मतलब मजा आता है ना परफॉर्मेंस प्रेशर पे मुझे काम करवाने के लिए. कर लो कोई नहीं कोई नहीं. सो मैं अगर ये प्ले करूं जो मैं प्ले करने वाली हूं, आई होप सत्पारो यू लाइक माय जो है दिस गाना फॉर यू ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
0: Not all music is loud. Some songs just sneak in.
3: What?
0: Makes you smile, hum along, and feel good. Welcome to Musti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Musti 24/7.

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले
1: होना था क्या क्या हो गया एक्सपेक्ट कुछ किया लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया. व्हाट इज हैपनिंग इन जैकलीन फर्नांडिस की जिंदगी लेट मी अपडेट यू ऑन दैट. 5:39 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. मैं आंत्रा आपके साथ यहाँ पर मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. भाई जिंदगी के चॉइसेस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो कभी कभी जो हमारी जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश जो उनके हैं चंद्रशेखर जो अभी जेल में लेकिन वहां से भी लव लेटर लिखते रहते हैं. प्रॉपर्टियां जैकलीन के नाम पे हर उनके बर्थडे पे करते रहते हैं. सो या आप किस तरह के लोगों को अपने जिंदगी में आने देते हो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. सो क्या हुआ था कि इन सब चक्रों में जैकलीन हो गई थी काफी ज्यादा परेशान. तो उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को जो है एक अर्जी लगाई थी कि ऐसा है कि मैं जो है इस 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपकी गवाह बनना चाहती हूँ. ठीक है तो आप मुझे वो करने दे क्योंकि मेरा ये जो है सुकेश चंद्रशेखर से कोई लेना देना नहीं है. सो शी वांटेड टू एस्टैब्लिश दैट बट अब बात कुछ ऐसी है कि हमारे ईडी जो है दे टोल्ड दिल्ली कोर्ट दैट सफिशिएंट मटेरियल जो है एग्जिस्ट करते हैं अगेंस्ट जैकलीन फर्नांडिस एंड दे क्लेम्ड दैट शी वाज फुल्ली अवेयर ऑफ सुकेश के क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड उसके बाद बावजूद भी शी कंटिन्यूड हर एसोसिएशन व्हाइल एक्सेप्टिंग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एंड बेनिफिट्स allegedly linked to proceeds of the crime and agency has also termed her claim of being a victim as self-serving and sought kind of more time to file a detailed response as well. तो भाई वही ना होना था क्या क्या सोचा था बट क्या होता हुआ जा रहा है. उस तरफ हमारे कॉनमैन सुकेश जो है वो कुछ करने से भी मतलब बिल्कुल बाज नहीं आ रहे. उनको वो उनको एस्टैब्लिश कर चुके हैं मेरा सच्चा प्यार है जैकलीन एंड यहाँ पे जैकलीन एस्टैब्लिश करना चाह रही है कि मेरा कोई सच्चा प्यार नहीं है. इन सब के बीच में बन गया है ये केस. सो अब जैसे जैसे इसमें आगे बात बढ़ती हुई जाएगी ऑफकोर्स इट्स टेकिंग अ टॉल ऑन हर करियर पाथ एंड एवरीथिंग एल्स एज वेल. तो हाँ जी हम आपको अपडेट करते रहेंगे इसके बारे में. बट चॉइसेस माय डियर फ्रेंड चॉइसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ दैट एक्चुअली डिसाइड्स द डायरेक्शन वेयर इट इज गोना गो अल्टीमेटली. हंगामा हो गया भाई इनकी जिंदगी में तो हो ही गया बट हमारे यहाँ पर भी हंगामा तो हो ही रहा है और भी ज्यादा हंगामा होगा क्योंकि आज हम आपको कॉन्टेस्ट लेके आए हैं और आपको जिताएंगे आम आम काफी सारे आम. गुड इवनिंग.

0: नीचे तुम ही हो. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. यू से वी प्ले. बड़े बड़े हिट सुनो.
1: 5:51 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. एंड उसी के साथ साथ जो है आईपीएल में आप की कौन सी टीम की चॉइस जो है आगे बढ़ती हुई जा रही है. भाई सारे पंजाब वाले थोड़े से तो बैक ऑफ हुए हैं क्योंकि SRH जो है पॉइंट्स टेबल पर ऐसा फर्राटे के साथ उन्होंने ये वैसा बदला हुआ है. हालात जज्बात ही बदल डाले हैं. बट वेल यू रियली नेवर नो विद द वे आईपीएल 2026 इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट की कौन सी टीम एक्चुअली मैं जीतने वाली है. बट मैं तो बहुत ही शिद्दत से द क्रिकेट कॉर्नर जो है फॉलो करती हूँ. सो मैं आइडिया लगाती रहती हूँ उनकी बातों के साथ. अच्छा ओ ऐसा. बट कमिंग बैक टू दिस वन भाई BCCI जो है अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर इज गोइंग ऑन ऑन द ग्राउंड बैक स्टेज भी जो है आईपीएल काफी काफी इंटरेस्टिंग लगता है. कई सारे ने कोई एक प्लेयर है जिनको वेप यूज करते हुए जो है ऑन कैमरा वो पकड़ा गया है और जिसने भी वो वीडियो ऑफ कोर्स वायरल हो चुकी है एंड BCCI के नजरों में जो है वो बिल्कुल आ चुकी है. सो BCCI जो है उन्होंने इशू किया है एक स्ट्रिक्ट न्यू एडवाइजरी बैनिंग all the use of vapes and e-cigarettes and other prohibited substances across all IPL 2026 ke venues, chahe wo dressing room ho, ya phir dugouts ho, ya phir practice facilities ho, ya phir team ke hotels ho. Now the move has recently come into kind of action kyunki protocol violations jo hai hue hai is season mein, to board jo hai wo tighten kar rahi hai rules around discipline, security and player ka conduct bhi. Reports ki maani jaye to players and support staff jo hai they have now been instructed not to carry or use such devices jab tournament chal raha ho and the BCCI jo hai has also warned franchisees jo hai about possible disciplinary action for any kind of violations. So jo naya SOPs hai are part of wider crackdown kind of they are aiming at maintaining jo hai professionalism and protecting the integrity of the IPL as well. मैंने कहा ना जितना ऑन ग्राउंड चल रहा है उसके पीछे पीछे भी काफी सारा कुछ जो है मामला चलता हुआ जा रहा है. सो वेल वो थी इस चीज की अपडेट. अब इससे ज्यादा आपको अपडेट चाहिए कि क्या हुआ भाई पिछले वीकेंड में कौन कहां रहा एंड वेयर इज द आईपीएल की कहानी विच स्टैंड्स टुडे. सो देर आर टू वेज वी आर ट्राइंग टू कीप यू पोस्टेड एंड अपडेटेड एवरी विच वे पॉसिबल. सो आज 7 बजे जो है ऑन एयर आपको जो है हमारा ऑन एयर द क्रिकेट कॉर्नर पे पता चल जाएगा कि कैसे रहे अभी जो गया है वीकेंड उसके गेम्स. एंड आज रात 8:30 बजे जो है मस्ती AVI पर डिटेल्ड डिस्कशन जो है बिल्कुल आपको मिल जाएगा. सो ऑन एयर भी एंड ऑडियो विजुअल भी वी आर काइंड ऑफ इंश्योरिंग दैट यू आर देयर राइट देयर है ना. बिल्कुल हम सिंसेरिटी के साथ अपने जो है काम करते हुए आगे बढ़ते हैं. एंड यहाँ पे जो है काफी खूबसूरत सा एक गाना. आई नो वन ऑफ आवर लिसनर रियली रियली लाइक दिस सॉन्ग. सो लेट मी प्ले दैट फॉर यू ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

वेलकम बैक 6 बजे के उस पार आप सभी का स्वागत है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यानी कि आपके चॉइस के गाने बिल्कुल यहाँ पर अंतरा आपके लिए प्ले करेगी। तो सोचा कि नहीं आपने कि क्या गाना सुनना पसंद करेंगे आप या फिर आपने मेरे ऊपर वापस से छोड़ दिया है कि अंतरा तुम but well I really want to play what you want to listen to so that you become like happy to the to your heart's content. Well, talking about happiness, I don't know how much happy people in India are after bhai Bharat ke Prime Minister Modi ne jo hai haal hi mein kafi sara kuch kaha hai. Short karke batane ki koshish karti hu ki hamare Prime Minister Modi jo hai unhone he has called for this collective national effort okay wahan par apni speech mein to navigate global economic pressures. इन्होंने रिक्वेस्ट किया भारतवासियों को यानी कि जहां भारत में जो रह रहे हैं जिन सिटीजंस टू अडॉप्ट कोविड एरा की एफिशिएंसी के मेजर्स जैसे कि वर्क फ्रॉम होम वर्चुअल मीटिंग्स रिड्यूस्ड ट्रैवल। उन्होंने बिल्कुल ये भी एनकरेज किया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज करें कार पूलिंग की तरफ जो है ज्यादा अपना झुकाव दें एंड ईवीज टू कट फ्यूअल कंजम्पशन एंड एडवाइज्ड अगेंस्ट unnecessary foreign trips, destination weddings and non-essential spending जैसे कि gold की purchases and pushed for buying made in India products. ये जो appeal है extended to reducing edible oil का consumption as well while farmers were urged to have half their chemical fertilizer का use and shift towards natural farming के practices. काफी सारे जो है travel agencies and companies के stocks hill गए हैं after his these announcements. So चल रहा है बॉस ये सारी चीजें चल रही है और हम यहाँ पर जो है बिल्कुल लेकर आते हैं कि आपको इस बात से बिल्कुल updated रखे कि कहाँ पे क्या चल रहा है apart from everything else which is happening. What else is going to happen here in just a while is that I am going to make you win arm ji ha mango give a visa. How is it going to happen? What you have to do? Stay tuned because ya aapne ye mauka haath se bilkul nahi jaane dena hai ji ji ji ji you got that right. Good evening.

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
3: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
4: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। यू से वी प्ले।
5: हाँ जी, 6:00 जब हो चुके हैं 17 मिनट बाय द स्टूडियो क्लॉक। मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि ले लो ले लो आम ले लो। मैं मजनू भाई की जैसे क्यों साउंड कर रही हूँ? रिमेम्बर दैट मूवी आलू ले लो। बट यहाँ पे आम ले लो, जीत के लेकर जाओ। आया ना इंटरेस्ट? या वे जैसे जीत की बात होती है, इंटरेस्ट अपने आप ही आ जाता है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं वंत्रा आपके साथ यहाँ पर बिल्कुल बनी हुई है ही है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला लेकर आई है यहाँ पर। सो वी यू हैव बीन काइंड ऑफ लिसनिंग दैट हम लोग बात कर रहे हैं जब व्हेनेवर वी टॉक अबाउट, इट्स लाइक एक साथ यू नो एक सांस में आप बात कर सकते हो GGMart ऑनलाइन एंड साथ में आम, बिकॉज यू नो ऑल द वे फ्रॉम द इंडिया के फार्म्स एंड उसके बाद जो है उनके केमिकल फ्री जो है उनके ये ऑर्गेनिक आम एंड विद लाइक सो मेनी बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग एंड समबडी इज गेटिंग टू सिंगापुर एंड डिलीवरिंग इट राइट आउटसाइड लाइक योर डोर step, it is insanely amazing. I mean, hats off and kudos to them for doing something like that. I have been drooling over and going crazy over arm never like before. जब से ये GGMart online मेरी ज़िंदगी में तो आया है तब से जो है और भी इस ज़्यादा. You know, right? I'm into a lot of health and all of these things. आज कल तो भाई arm is one of the fruits. Okay, you can always have if you are into the healthy living style. तो बात कुछ ऐसी है कि हमने सोचा कि कुछ चंद जो है हमारे पास ये आम के डब्बे हैं तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल वो आप जीत पाओ। बट आप जीतोगे कैसे? देखिए, एक सिंपल सा सवाल, उसका सिंपल सा जवाब, ठीक है? सुनने को आप है तैयार? आर यू ऑन योर अलर्ट मोड? सो टेल मी, व्हाई आर इंडियन मैंगोज ऑफ GGMart बेटर देन एनी अदर इन सिंगापुर? व्हाई? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, बिकॉज दे लुक बेटर। ऑप्शन B, they are chemical free, no preservatives. Yeah, option C, they are happy to come to Singapore, just like all of us. तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि इनमें से क्या ऑप्शन या ऑप्शंस जो है बिल्कुल सूट करता है, और एक बार आपने वो भेज दिया तो फिर आपको लगेगा कि बस मैं ही हूं, मैं जानती हूं, मुझे ही वो आम मिलना चाहिए। सो इसीलिए मैंने इतनी आम सी बात इतनी खास तरीके से बताई है। सो 9158963 या फिर हमारा जो फेसबुक पेज है वहां पर भी पोस्ट हमने डाला हुआ है, वहां पे कमेंट सेक्शन में भी आप अपना जवाब बिल्कुल डाल सकते हो। एंड लेट्स सी हु स्टैंड्स अ चांस टू विन दिस मैंगोस। GGMartOnline.com पर जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हो दैट व्हाट आर देवगढ़ वाला या रत्नागिरी के आम जो है, जस्ट गो एंड चेक देम आउट। अल्फांसो आम देयर। भूख लग गई, as usual. Yeah. All right. Let me shut up and bounce right here on Radio Musti 24/7 Live.

बाजू ट्रैफिक अपडेट 6:30 बज चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। चलिए बताते हैं कि ट्रैफिक अपडेट इस घंटे क्या कहता है। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको इस वक्त मिलेगा ऑन AYE टुवर्ड्स टुअर्स आफ्टर लोअर डेल्टा रोड। हेवी ट्रैफिक की खबर ऑन SLE टुवर्ड्स CTE बिटवीन मांडा एवेन्यू एंड वुडलैंड्स एवेन्यू 2। और व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स टुअर्स आफ्टर टैंपनीज। सो ये था ट्रैफिक अपडेट ऑफ दिस घंटा। बिल्कुल कीप दोस आंसर्स कमिंग इन गाइज। हमने अभी थोड़ी देर पहले जीजी मार्ट ऑनलाइन के आम जीतवाने के लिए एक आम सा सवाल पूछा था। बहुत ही आम सा सवाल है। अगर आपने जस्ट इन केस मिस कर दिया हो तो सवाल कुछ ऐसा था, व्हाई आर द इंडियन मैंगोज ऑफ जीजी मार्ट बेटर देन एनी अदर इन सिंगापुर। ऑप्शन ए बिकॉज दे लुक बेटर, ऑप्शन बी बिकॉज दे आर केमिकल फ्री एंड नो प्रिजर्वेटिव्स एट ऑल, या ऑप्शन सी दे आर हैप्पी टू कम टू सिंगापुर। That is why. सही ऑप्शन या तो हमें 9158963 पर भेज दे या फिर हमारा जो फेसबुक या इंस्टाग्राम का पोस्ट है वहां पर कमेंट सेक्शन पे भी डाल सकते हैं। सो वेल, इसी के साथ जान से गुजरते हुए धुरंधर का गाना हमारी प्लेलिस्ट में ना है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। तो आज कैसे हो जाएगा, लेट्स गो एंड लेट्स लिसन टू इट एंड कम बैक ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे जान पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेली है।
3: जोश में रहो।
4: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला। मस्ती बॉयस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: आइए आपको बताया जाए कि व्हाट्स मोर कुकिंग, भाई आमिर खान एंड आशुतोष गोवारिकर आर अबाउट टू रीयूनाइट। व्हाट आर यू सेइंग? आई थॉट आमिर खान सर तो मतलब अभी सबैटिकल टाइप में कुछ थे, उन्होंने कहा था कि अब वो अपनी पर्सनल जिंदगी जो है ना, जो काफी काफी अच्छी है कह ही सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, तो वो इंजॉय करना चाहते हैं। बट वेल, अब खबर तो खबर है और देनी तो आपको पड़ेगी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आंसर आपके साथ, यहाँ पे चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। एंड 25 साल बाद माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर दे क्रिएटेड दैट सिनेमैटिक हिस्ट्री विद लगान द मूवी, ओके, ये हमारा आइकॉनिक एक्टर डायरेक्टर का डुओ जो है आमिर खान एंड आशुतोष गोवारिकर, इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव, दे आर रीयूनाइटिंग फॉर दिस मैसिव मैसिव न्यू प्रोजेक्ट। ओके, आजकल हर प्रोजेक्ट भी वैसे मैसिव ही होता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ये जो दोनों हैं, दे आर कोलैबोरेटिंग ऑन अ पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा अगेन, ओके, सेंटर्ड ऑन हिस्टोरिक इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज, विच मार्क द फर्स्ट एवर क्रिकेटिंग एनकाउंटर बिटवीन टू नेशंस फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। आमिर खान इज एक्सपेक्टेड टू पोर्ट्रे द लेजेंडरी क्रिकेटर लाला अमरनाथ एंड द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन अ स्टोरी दैट काइंड ऑफ गोइंग टू एक्सप्लोर द हाई स्टेक्स की राइवलरी एंड द नेशनल प्राइड ऑफ दैट एरा। वाइल अब ये जो फिल्म है, रिपोर्टेडली इट्स काइंड ऑफ बींग बैक्ड बाय एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड स्क्रिप्ट जो है वो फाइनलाइज की जा रही है। मेकर्स जो है दे हैव नॉट येट ऑफिशियली अनाउंस द प्रोजेक्ट। सोर्सेज की अगर मानी जाए हमारे बॉलीवुड वाले कबूतर जी ये जो है ना अनाउंसमेंट इज प्लान फॉर June 15th, 2026, विच इज काइंड ऑफ कोइंसाइडिंग विद द 25th एनिवर्सरी ऑफ द रिलीज ऑफ लगान। लाइक सीरियसली? ओके, चलो जी, ये भी अच्छा है जी, मतलब हम तो वेट ही कर सकते हैं, राइट? एंड देन वी हैव टू सी वेदर इट वर्क्स वेल और नॉट। भाई इससे ज्यादा और इससे कम ना हम कह सकते हैं, ना हम इसमें कुछ कर सकते हैं, बट आमिर खान, आर यू श्योर? आई एम श्योर ही इज श्योर, है ना? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, जी हाँ, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे अरिजीत सिंह पहले आएंगे और उसके बाद हमारे दविंदर पाजी ने बहुत ही टाइम स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की हुई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? 6:45 PM मंत्रा जी, और इतने प्यार से बोलते हैं वो, तो आपका रेट्रो गाना मैं एकदम ढूंढ के लिए आई हूँ, एंड आई शैल प्ले इट फॉर यू इन जस्ट अ व्हाइल ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। इफ यू वांट टू रिक्वेस्ट अ गाना, वी स्टिल हैव टाइम। 9158 9963।

0: हाँ, तुम ही डीजे तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो।
1: हाँ जी देवेंद्र पाजी, मजा आया कि नहीं आया अपना गाना पूरा सुनने में? बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस शो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। मैं हूं अंतरा आपके साथ यहाँ पर। 6:52 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, एंड भाई मुझे बड़े स्पेसिफिक टाइमिंग के साथ, क्योंकि उन्होंने प्ले करने को बोला था, तो पूरा गाना मैंने बिल्कुल यहाँ पर प्ले किया। एंड क्या होता है कि जब भी कोई रेट्रो गाना मुझे मेरे इस शो पे जो है रिक्वेस्ट करता है, आई फील लाइक दैट यू गाइस आर टेस्टिंग मी कि आज इसको एक गूगली डाल के देखते हैं कि क्या ये स्माल पाएगी, क्या ये वो गाना प्ले कर पाएगी। बात गूगली पे चक्कर मारते हुए मैं अलग टाइप की बाजीगर यहाँ पे बनी हुई हूँ। सो आई एम श्योर दैट यू नो देवेंद्र पाजी, एंड जैसे कि कविता जी ने भी अभी यहाँ पे यही कहा कि भाई बड़े दिनों बाद ये गाना सुनाओ, इट्स क्वाइट नाइस, इट्स गुड टू लिसन टू दी सॉन्ग। सो या It happens, these happens, and that's the beauty of this radio show as well. भाई काफी सारी चीजें जो है ना ही सिर्फ गूगलियां यहाँ पे हो रही है, क्रिकेट के मैदान में भी काफी गूगलियां पड़ रही है। Like a lot of IPL teams जो है अपने अपने rules को काफी strict किए हुए जा रहे हैं। देखो मैं कोई IPL expert तो है नहीं, वो तो हमारे वो तीन धुरंधर है जो आते हैं और हमको मस्ती VIP डिटेल में समझाते हैं। मैं पीछे के गॉसिप के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे इट कैन बी यू नो हार्दिक पांड्या जो है उन्होंने MI को यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। क्यों? Why? सब यही पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं। या फिर DC जो है दिल्ली कैपिटल्स, वहां पे प्लेयर को बोला गया कि नहीं अब से तुम कोई वायरल वीडियो नहीं बनाओगे, नहीं होगा कोई व्लॉग तुम्हारा, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म नाम की भी तो कोई चीज होती है। आई एम लाइक ओके ठीक है इफ यू से सो। वेल ये सारी चीजें एक तरफ और आज का हमारा सेगमेंट दूसरी तरफ। दैट्स राइट, जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया दैट आज से ऑन एयर भी आपको IPL की अपडेट्स दिए जाएंगे। नॉट मी, जस्ट वेट फॉर क्लॉक टू स्ट्राइक 7 PM, दैट्स वेन मंडे टू फ्राइडे यू विल गेट टू हेयर IPL के अपडेट्स बिल्कुल एकदम टच टू टच, मतलब टच नहीं टिच होता है, हाँ टिच टू टिच। और डिटेल में जानने के लिए मस्ती AVI देखना 8:30 मंडे एंड फ्राइडे। लाल के लिए ये गाना करता है रैप इस घंटे के साथ, एंड यप मिलते हैं अगले घंटे में। नॉट मी, नॉट मी, बट हु इज गोना बी देयर जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: It's time for the Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live.
1: Namaste, adab, sat sri akal and very warm hello to all our listeners. हम लेके आए हैं एक ब्रांड न्यू सेगमेंट द क्रिकेट कॉर्नर डेली आईपीएल अपडेट्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 एन इनिशिएटिव ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जितेश, अ टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल इन सिंगापुर एंड अ क्रिकेटर बाय पैशन। क्रिकेट मेरा पहला प्यार है और पहले प्यार की कीमत तुम क्या समझोगे रमेश बाबू। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट in Delhi since 1997 and since moving to Singapore in 2014, I have continued to live and breathe this beautiful game. Cricket ne mujhe bahut kuch diya hai and the Cricket Corner is my way of giving back. I've had the privilege of covering ICC World Cup events and the IPL alongside my fantastic co-host Santosh Kumar and Neil Daswani on Masti AVI. And now we are bringing that energy to you every single day on Radio Masti 24/7. दोस्तों, ये सेगमेंट वो है जैसे सलमान खान की एंट्री, नो ड्रामा, नो डिले, सीधा एक्शन। कोई फिल्टर्स नहीं है, कोई बकवास नहीं है, बस एकदम कड़क असली प्योर गोल्ड क्रिकेट डेली सिर्फ आपके लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद कल रात का फुल ब्लॉकबस्टर मैच अपडेट लेके। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आप सबको एक टॉप सीक्रेट बताता हूँ। हर घर में जैसे ही आईपीएल स्टार्ट होता है ना, सबकी बीवियां इंडियन आइडल की सिंगर्स बन जाती हैं। अरे सही में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और पता है हर रोज सब कौन सा गाना गाती रहती हैं?
2: रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पड़ी ही नहीं है मेरी ब्यूटी किस काम की, हर रात पे टिक टिक करते।
0: The Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live.

0: It's time for the Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live.
1: Welcome back to the Cricket Corner. Daily IPL updates Monday to Friday only on Radio Musti 24/7. जी हाँ, 3 days, 4 matches और 4 बार फुल फिल्मी ड्रामा. तो पहला गेम फ्राइडे 8th मई को दिल्ली में KKR वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स. दिल्ली कैपिटल्स पोस्टेड 142 फॉर 8. सोचे कि अच्छा स्कोर होगा, बट फिल एलन वॉक्ड इन एंड हिट 100 ऑफ 47 बॉल्स. KKR चेस्ड इट इन 14.2 ओवर्स, 8 विकेट्स इन हैंड एंड 34 बॉल्स टू स्पेयर. अब प्लेऑफ चांसेस के लिए दिल्ली कैपिटल्स को मैं सिर्फ यही बोलूंगा, अब दिल्ली दूर है. ऑन द अदर हैंड KKR ऑन द राइज विद बैक टू बैक 4 straight wins. कौड़बो लौड़बो जीत बोरे. दूसरा गेम सैटरडे 9th में जयपुर से गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल. शुभमन गिल 84 ऑफ 44, साई सुदर्शन 55, अ मैमथ 118 रन ओपनिंग स्टैंड विच हेल्प जीटी टू पोस्ट 229 फॉर 4. इन रिप्लाई राजस्थान रॉयल्स ट्राइड फाइटिंग विथ वंडर किड सूर्यवंशी ब्लास्टिंग 36 ऑफ 16 बॉल्स, बट देन राशिद खान he unleashed his magic with 4 wickets for 36 runs and folded Rajasthan Royals for just 152. Gujarat Titans won by 77 runs. I think this is their biggest win ever, and now they have 4 back-to-back wins and they are flying high. Phir aaya double header Sunday. First up in Chennai, CSK versus LSG. English 85 of 33 balls and power play 90 runs, still LSG finished with just 203. In reply, Urvil Patel 65 of just 23 balls, tying the IPL record of fastest 50. CSK chased it with 4 balls to spare, 208 for 5, first time chasing 200 plus score since 2019. Or LSG officially eliminated from playoff race. Then the blockbuster, RCB versus MI in Raipur. और भाई क्या थ्रिलर था. भुवी 4 विकेट्स रिस्ट्रिक्टिंग MI टू 166 फॉर 7 और RCB चेज एब्सोल्यूट रोलर कोस्टर. विराट कोहली बैक टू बैक फर्स्ट बॉल डक्स, बट कृणाल पांड्या 73 ऑफ 46 फाइटिंग लाइक अ लोन वॉरियर विद क्रैम्प्स विद पेन. लास्ट ओवर 15 नीडेड, अ वाइड नो बॉल विकेट, भुवी 6 एंड लास्ट बॉल पे रसिक सलाम 2 रन्स और RCB ने 2 विकेट से मैच जीत लिया. MI eliminated and RCB top of the table. अच्छा एक बात बताऊं, for the full breakdown of these matches, watch me with Santosh and Neil on Musti AVI every Monday and Friday at 8:30 PM. क्या हुआ? Oh, you missed the episode. अरे no tension at all. Head straight to the Musti AVI tab on our app and watch anytime, anywhere, any episodes. This is Jitesh signing off from the Cricket Corner. Josh mein raho aur daily IPL updates sunte raho. Ab kal fir milenge. Kyunki ek baar jo maine commitment kar di, uske baad to main khud ki bhi nahi sunta.
0: The Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live.

0: What, Chunka?
1: क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो।
2: हाँ हाँ, तुम ही डीजे, तुम ही हो। Must be voice आपकी चॉइस। You say, we play। बड़े बड़े हिट्स सुनो।
3: That is right. What IPL? अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हिमकाओ मत, सुना करो मेरी बातों को, ध्यान से सुना करो। Welcome back to Radio Masti 24/7 Live. मैं अंतरा बिल्कुल मैं यहाँ पे वापस आ चुकी हूँ। 7 बजकर हो चुके हैं 15 मिनट। First of all, let me thank Jitesh over here. थोड़ी देर पहले 7 बजे मैंने कहा था that the IPL segment will start on air and that's what happened. तो well, हमारे जितेश जी जो हैं उन्होंने काफी जो है माहौल अच्छे से सेट किया। उसके बाद हमारा जो वीकेंड पे जितने भी मैचेस हुए उसके बारे में हमको इन शॉर्ट बताया, बट इन डिटेल जस्ट इन केस अगर आपको जानना हो, सो ही हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मस्ती एवीआई एवरी मंडे एंड फ्राइडे। बिल्कुल आप जितेश, नील एंड संतोष को उनके एनालिसिस, उनके प्रेडिक्शंस एंड उनके छोटे छोटे यू नो सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ मेकिंग इट ऑल द मोर इंटरेस्टिंग बिल्कुल ट्यून इन कर सकते हो। फिलहाल के लिए अगर वापस यहाँ पर आया जाए तो बिकॉज क्रिकेट की बात हो रही थी तो भाई रोहित शर्मा का जो है एक वीडियो काफी वायरल जा रहा है एंड इट इज क्वाइट शॉकिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो वेल, दिखाया जा रहा है गाड़ी में हमारे भाई रोहित शर्मा जी जो है वो बिल्कुल अपने फैंस को ग्रीट कर रहे थे खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाल के, व्हेन द सिचुएशन एक्चुअली सडनली टर्न वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। सो ही रीचेस आउट टुवर्ड्स द सपोर्टर्स जो कि उनके गाड़ी के आसपास बिल्कुल भिन-भिनाते हुए बिल्कुल आए हुए थे कि अरे अरे रोहित रोहित। सो क्या हुआ, कुछ फैंस जो है दे अलजिटली ट्राइड ग्रैबिंग एट हिज लग्जरी रिस्ट वॉच रिपोर्टेड टू बी वर्थ अराउंड 3.25 करोड़। भाई इतना क्लियर है ना ये वीडियो, उसने हाथ बाहर निकाल वो ना हाथ उंगली दिया हाथ लेकर चले गए, वो उनका कुछ ऐसा ही हाल हो गया था। वो दैट बॉय ऑलमोस्ट स्नैच्ड दैट रिस्ट वॉच एंड दैट मोमेंट क्विकली चेंज फ्रॉम अ नॉर्मल फैन इंटरेक्शन टू दिस वेरी टेंस सिचुएशन जहां पे रोहित इमीडिएटली ही पुल्ड हिज हैंड बैक एंड ही रिएक्टेड रियली शार्पली बिफोर द कार विंडो एक्चुअली गेट्स रोल्ड अप। नाउ दिस क्लिप हैज ऑब्वियसली गॉन वायरल बट इट ऑल्सो हैज स्पार्क्ड एक बहुत ही फ्रेश डिबेट अराउंड सेलिब्रिटी की सेफ्टी एंड फैंस का बिहेवियर एंड पर्सनल बाउंड्रीज पब्लिक स्पेसेस में। ऑनलाइन बहुत सारे लोग जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर द रेकलेस बिहेवियर एंड कॉलिंग इट अ सीरियस ब्रीच ऑफ बाउंड्रीज व्हाइल अदर्स आर शॉक्ड दैट इवन रिस्पेक्टेड क्रिकेटर्स जो है वो फेस करते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स ड्यूरिंग नॉर्मल पब्लिक इंटरेक्शंस। सो भाई मैं तो हमेशा कहती हूँ बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करना आना चाहिए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट या आप जगह देखें आप मतलब वॉट टू से इट समटाइम्स ब्रेक्स माई हार्ट बट देन दिस इज what it is and then we say ki bhai sirf celebrity ko professional hona chahiye, sirf unke professional hone se thodi na hoga dost, hai na, galti se mistake thodi na ho jati hai har baar ye janta karar de denge aur nikal jayegi, I don't know but anyways kavita di aapka request jo hai bilkul maine line up kar diya hai, let us listen to galti se mistake, that is a song coming up next for you on Radio Masti 24/7 live।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: अच्छा सुनो, जरा ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: 1/2 kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो, और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
1: वाजी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: गाना बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: Guys, what is happening in this AI वाली दुनिया? कोई मुझे कुछ बताएगा कि ये क्या चल रहा है? मैं बताती हूँ, क्योंकि my curiosity takes me over there and then my AI thinks that भाई तुम कितनी, तुम्हारी वैरायटी कुछ ज्यादा ही स्पाइसी नहीं होती जा रही है लाइफ में। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ, मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। एंड वॉट द AI doesn't understand is कि मैं तो मात्र क्यूरियोसिटी के चक्कर में जब मैं ऐसी खबरें पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि ये क्या है, इसको तो चेकआउट करना चाहिए। तो apparently, artificial intelligence generated videos which features personified fruits, मतलब ऐसे जो है बॉडी इनकी ह्यूमन है बट इनके चेहरे फ्रूट्स के, मतलब स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है, आम लगा हुआ है, वाटरमेलन लगे हुए हैं। एंड ये कहानियां चल रही है, दे आर गेटिंग कॉट इन अफेयर्स, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, एंड दे आर ड्रॉइंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन सोशल मीडिया, टर्निंग इन टू दिस बिजार मेलोड्रामा, इन टू वन ऑफ द यू नो लेटेस्ट शॉर्ट फॉर्म ट्रेंड्स जो कि आजकल बहुत ही चल रहा है, ठीक है। बट ये जो ट्रेंड है इज नाउ फेसिंग काइंड ऑफ स्क्रूटनी, क्योंकि मेजर फ्राइड चिकन की फ्रेंचाइजी जो है उन्होंने कॉपी कर लिया है ये फलों वाला फॉर्मेट, एंड उन्होंने फलों की जगह फ्राइड चिकन लगा दिया है, मतलब चेहरे पे, एंड देन नाउ द फ्राइड चिकन इज हैविंग एन अफेयर विद समवन, एंड द थर्ड फ्राइड चिकन इज कर, What's happening? This is where my question again is कि भाई apparently जब ये fried chicken वाली चीज हुई तो उनको फिर apology जो है letter वेटर डालना पड़ा Instagram account पे कि भाई हमने तुम्हारी copy कर लिया, we are sorry but it was very very you know नाइस। तो वही क्यूरियोसिटी के चक्कर में मैंने कहा ये कौन से वाले वीडियोस है जो उनकी बात कर रही है, जो मुझे अभी तक पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट भी करते हैं। सो इन द वीडियो हस्बैंड रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लेन फ्राइड चिकन डिस्कवर्स दैट द वाइफ इज हैविंग एन अफेयर विद अ पीस ऑफ सम अदर फ्राइड चिकन, या फिर यू नो स्पाइसी सीजनड वाला फ्राइड चिकन, एंड देयर न्यू बॉर्न बेबी इज शोन कवर्ड विद सॉस, एंड द हस्बैंड लेटर फॉल्स, आई हैव जस्ट हैड इट। द प्रॉब्लम विद द AI इज दैट आप ये मुझे पाल और फ्राइड चिकन दिखा रहे हैं। आई हैव टू गो बैक एंड आई थिंक आई नीड टू रीसेट माय थिंग्स। ओह भाई, मैं सोचती हूँ इस बारे में क्या करना है, बट जस्ट टेल मी, आई आर यू वन ऑफ दोज हु आर वॉचिंग दिस कॉन्टेंट? नहीं, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। या गुड इवनिंग।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: Not only I like this gana, I love this movie as well. That is right. Ranjana ki main baat kar rahi hu. One of the very few Sonam Kapoor movies which I actually like. But it is not Sonam Kapoor over here. It is Dhanush who took away everything in this movie. Storyline to acting to वो जो पूरा मतलब फील आता है ना, और उसका जो दोस्त बना हुआ होता है, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बट ही इज एन एक्सलेंट एक्टर। और क्या क्या अमेजिंग डायलॉग्स है इस मूवी में, मजे ही आ जाते हैं जब आप सुनते हो ना। तो आपके इफ यू बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन, आप इंडिया से कहीं से आ रहे हो, तो फिर आप इतना रिलेट कर पाते हो बिकॉज इट इज लाइक दैट ओवर देयर। बट कमिंग बैक टू दिस, अचानक से ये गाना सुन के आई वाज काइंड ऑफ कि भाई रंजना दिखे हुए बड़े दिन हो गए। सो 7:40 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। ट्रैफिक अपडेट कुछ ऐसा कह रहा है कि व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन AYE टुवर्ड्स टुअर्स एट पाइनियर रोड एग्जिट। हैवी ट्रैफिक की खबर है ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी एट BKE एग्जिट। और एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन फेरर रोड टुवर्ड्स क्वींसवे आफ्टर डनअर्न रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 4। सो वेल, ये था हमारा ट्रैफिक अपडेट इस घंटे का। गाने का अपडेट इज क्वाइट नाइस, दिल धड़कने दो का टाइटल ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड इवनिंग।

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेले है। जोश में रहो।
2: Your passport to the world every Monday morning from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
3: The morning show with Renuka 7 AM Mondays.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out. Josh
6: Mehra. Aapke hits, aapki playlist aur hamara thoda sa mirch masala. Musti Voice, aapki choice. You say, we play.
7: From an AI news to the brands who are kind of turning things around. कि भाई अभी इनसे एक ब्रेक ले लो। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव में हूं आपके साथ। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, आप सुन रहे हो एंड वी टॉक अबाउट एवरीथिंग ऑन दिस शो। ओके, इनफैक्ट मैं जब जब आती हूँ मुझे लगता है द वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, हर चीज जो चल रही है दुनिया भर में सब कुछ पता होना चाहिए। सो एक तरफ जहां पे अ लॉट ऑफ पीपल यू नो दे आर गोइंग बैक टू द ओल्ड काइंड ऑफ फोन्स, यानी कि वो वाले मोबाइल फोन्स जो बिल्कुल 90s के टाइम पे शुरुआत में आए थे, कि जस्ट उसमें से आप किसी को कॉल कर सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट करना हो तो बड़ी शिद्दत के साथ आप किसी को टेक्स्ट भी कर सकते हो एंड यू कैन रिसीव दैट एज वेल। लाइक दे आर सेइंग कि हमको उतनी ही जरूरत है स्मार्टफोन जो है, इट हैज जस्ट काइंड ऑफ टेकन टू मच। सो वहां जहां पे ये सारी एक चीजें चल रही हैं, वहां पे ब्रांड जो है एक वो ये सोच रहा है कि हाउ अबाउट गिविंग यू एंड योर फोन अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक। नाउ क्या है कि जी हाँ, इस ब्रांड का जो नाम है, इस ब्रांड की एक चॉकलेट है और हाल ही में एक मेजर हाइस्ट हुई थी इस ब्रांड के साथ, जहां पे ये जो चॉकलेट है मिलियंस एंड मिलियंस इनका जो शिपमेंट है रास्ते से जा रहा था वो ट्रक किसी ने लूट लिया था एंड देन या so you know which brand I'm talking about, guess ठीक है। तो well अभी उन्होंने क्या है कि they have introduced this wrapper can block your phone का signal and they are calling it the break mode. So it's like a mini Faraday ka cage, right? Meaning once you put your phone inside this wrapper, it cuts off all the calls and the internet and the notifications completely. Now how you know they what is brilliant about this, how they made their brand to transform this packaging into such a behavior. Okay, instead of just telling ki bhai thode der break le lo, thoda der unplug kar lo, bhai ek physical tool de raha hai, making it like a ki it's smart reminder ki jab aapko thoda sa break lena ho to aap hamare is brand ka jo hai wrapper jo hai use karke apne phone ko isme dal dijiye thodi der ke liye, jab thodi der ke bhi jitni der ke bhi aapko break chahiye just take it away and yeah, It just kind of works well. जहां पर ifs and buts है वहां पर ये चीज भी है। So there's everything out there in the market, right? Which way or yeah, which choice we have to make, वो हमारे ऊपर है। उसी पे तो सब कुछ आजकल based है। What kind of choices are you making? Radio Musti 24/7 Live पर गाने की choice मेरी always A1। Coming up next, Mohit Chauhan, movie का नाम Rockstar। Oh, मेरे दोस्त का favorite movie।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: या ऐसा कुछ मेरे घर पे भी गाना गा रहे होंगे दादान परिंदे घर आ जा जाएंगे जाएंगे हम भी घर जाएंगे क्योंकि घर जाएंगे नहीं तो कल सुबह आएंगे कैसे है ना तो बस थोड़े घंटे की वेट और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पर जो चल रहा था मस्ती वॉइस आपकी चॉइस मैंने सब की चॉइसेस प्ले कर दी अपने भी चॉइसेस प्ले कर दी आई होप एवरीबॉडी इज सैटिस्फाइड अब हम कल सुबह मुलाकात करेंगे मस्ती का मंत्रा लेकर आएगी आंसर रा बिल्कुल 7 बजे और टाइम है बिल्कुल ट्यून इन कर लीजिएगा बट बिफोर आई लीव फॉर दिस इवनिंग जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिमाइंडर कि आज जो है 8:30 बजे ऑन मस्ती AVI जहां पर आपने आज अनूप जलोटा जी को along with trailer ka dekha tha if you have missed the conversation go to the Masti AVI tab and you can catch the conversation again over there it was really really good okay but abhi 8:30 baje jo hai IPL 2026 ka fever bilkul aur zyada badhega because hamare IPL ke experts yani ki cricket ke experts in fact Jitesh and Santosh and Neil jo hai they are gonna just break down the weekend mein jo matches hue usko ekdam proper style if you are IPL fan this is a must watch for you फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत आई विल कैच अप विद यू टुमारो मोर एंड सुबह सुबह तो कैचअप करने में मजा ही लगाता है ना सुबह उठने में मजा अलग आता है ऐसी भीनी भीनी नींद के साथ इंसान बिल्कुल नहीं आता है मैंने कहा मैं गुड नाइट बोल रही हूँ बाय बाय टेक केयर

I would like to thank Mirchi Awards for giving me this opportunity. हर कंपोजर का एक ड्रीम होता है. मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं अपने देश के साउंड्स को लेके कुछ करूं. और मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे ये मौका मिला कि मैं अपने देश के म्यूज़िक को एक साथ इकट्ठे बाइंड करके एक स्टेज पे लाऊं. एंड इट वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल विदाउट दिस अमेजिंग आर्टिस्ट्स ऑन स्टेज. एंड दिस इज साउंड ऑफ आवर नेशन. And this is what makes me love my zindagi. So on that note.

यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

अजनबी, तुम जाने बेजाने लगते हो। अरे मैं भी जाना बेजाने लूंगा, मेरी आवाज जरा गौर से सुनिए तो सही। मेरा नाम है जमर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर कर रहा हूँ आपका इस्तकबाल। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल सिंगापुर, कैसे हैं आप? सारू छे, अरे अखा सिंगापुर मारू छे। तो आज यादों का कारवां में हम आपको ले चलेंगे 1974 के साल में, उस दौरान आई जबरदस्त हिट फिल्मों का जिक्र करेंगे और कुछ उनके पीछे के ऐसे रोचक किस्से जो आप सुनना चाहेंगे, जो शायद आपको पता ना हो, शायद पता भी हो, कोई बात नहीं, यादों का कारवां है, बेहतरीन गानों के साथ इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली फिल्म जो 1974 की हम ले रहे हैं वो है अजनबी। बॉलीवुड की फिल्मों में गानों को फिल्माना एक सबसे बड़ा चुनौती रहा है, रहता भी है। अब देखिए होता भी है, ये दर्शक जो होते हैं वो पहले गाना सुनते हैं फिर गाना देखते हैं, तो गाना अगर पसंद आ गया तो वो फिल्म भी देख लेते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं ना फिल्म देखने के। तो ये बात आज की नहीं है, बहुत पहले से भी यही होता आ रहा है। गानों का रिकॉर्ड अगर हिट हो गया तो फिल्म देखने चले जाते थे। तो फिल्म मेकर्स अपने गानों को बेहतरीन बनाने के लिए कई तरह के फंडे अपनाते हैं। हाँ यकीन मानिए, अब आप ये सोचिए कि जितना वो गाने के बोल पर ध्यान देते हैं, उसके म्यूजिक को निखारने संवारने में जितना ध्यान लगाते हैं, जितना पैसा लगाते हैं, उतना

वहीं कोशिश वो करते हैं गाने की लोकेशन तलाशने में भी, ताकि गाना कमाल का बन जाए। अब सोचिए, लोकेशन विदेश की हो सकती थी, हिंदुस्तान के किसी खूबसूरत वादी की हो सकती थी, यहाँ तक तो ठीक है, पर अगर लोकेशन कोई ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन के ऊपर की हो तो क्या कहिएगा, बताइए। दरअसल बॉलीवुड फिल्मों में चलती ट्रेन में गाना शूट करने का चलन शुरू हुआ था 1974 में आई फिल्म अजनबी से ही। चलती ट्रेन पर पहली बार फिल्माया गया था गाना, वो गाना याद है आपको, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जी, ये गाना पहला गाना था जो चलती ट्रेन पर पिक्चराइज किया गया था, और इस गाने में राजेश खन्ना साहब और जीनत अमान के मस्ती भरे अंदाज ने तो जैसे तड़के का काम कर दिया था। बस फिर क्या था, इसके बाद तो बॉलीवुड में ट्रेन पर गाने शूट करने का चलन सा बन गया था। वैसे अजनबी फिल्म का सिर्फ यही गाना हिट नहीं था, बल्कि तमाम गाने इस फिल्म के जुबान पर चढ़ गए थे उस वक्त दर्शकों के। जैसे भीगी भीगी रातों में, ये इसी फिल्म का गाना था, और एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, इसे कैसे भूल सकते हैं आप। तो एक से बढ़कर एक गाने इस फिल्म में, और इसीलिए ये फिल्म हो गई सुपर डुपर हिट। तो आज की इस सुपर डुपर हिट फिल्म से हम शुरू कर रहे हैं, उसके गानों से शुरू कर रहे हैं, यादों का कारवां। आप बने रहेगा समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव के इस बेहतरीन सफर पर। स्टे कनेक्टेड।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: वेलकम बैक, समर है मेरा नाम। 1974 की फिल्मों का जिक्र करना है आज मेरा काम। जी आज यादों का कारवां गुजर रहा है 1974 के ईयर से, और रेडियो मिस्टर 24/7 लाइव से मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ आपका दिल खोल कर दोनों बाहें फैला कर स्वागत। वेलकम बैक। तो अब हम अगली फिल्म का जिक्र कर लेते हैं। ये थी आपकी कसम, और आपकी कसम क्या कमाल की फिल्म थी, बहुत ही कमाल की, बहुत जबरदस्त इसकी कहानी थी, जबरदस्त और कमाल का डायरेक्शन था, और बहुत ही कसा हुआ डायरेक्शन था, और बहुत ही कमाल का म्यूजिक था। म्यूजिकल हिट, राजेश खन्ना साहब की फिल्म। राजेश खन्ना साहब उस वक्त टॉप पर चल रहे थे, और एक मिडास टच था उनके पास। जिस फिल्म को वो छू रहे थे वही सोना उगल रही थी, सोना बन जाती थी, मतलब कि वो सभी फिल्में हिट हो जाती थी भाई। और जहां तक जोड़ी की बात है तो उनकी कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ी जमी, पर दर्शकों ने जितना राजेश खन्ना और मुमताज साहब की जोड़ी को पसंद किया उतना तो शायद ही किसी और को किया होगा। सबसे ज्यादा हिट इसी जोड़ी ने दी राजेश खन्ना साहब की फिल्मों में। अब उस धमाकेदार सॉन्ग को कोई कैसे भूल सकता है भाई, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, ये प्याला तेरे नाम का भी आपकी कसम का ही ये जबरदस्त गाना था। आनंद बख्शी और आरडी बर्मन के साथ किशोरदा की तिकड़ी का जलवा इस फिल्म में भी देखने को मिला, और जलवा भी ऐसा कि वो आज तक बरकरार है और शायद आगे भी बना रहेगा। वैसे इस गाने से जुड़ा एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। हुआ यूं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर जी ओम प्रकाश अपनी पहली फिल्म बना रहे थे आपकी कसम, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म के गाने बहुत ही हिट रहे थे, खास तौर से करवटें बदलते रहे, सारी रात हम, इसका टाइटल ट्रैक था आपकी कसम आपकी कसम। और एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। लेकिन जय जय शिव शंकर बहुत ही मस्ती भरा गाना है, और इसका जिक्र अगर मैंने नहीं किया तो फिर क्या किया। तो इस गाने के पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो कहानी कुछ इस तरह की है कि जब आरडी बर्मन साहब इस गाने को बना रहे थे तो उन्होंने इसकी खास तैयारियां की थी। ये गाना एक बहुत बड़े समूह पर पिक्चराइज किया जाने वाला था, इसलिए बर्मनदा चाहते थे कि वो एक्स्ट्रा म्यूजिशियंस और कोरस गाने वाले लोगों को ले आए। उन्होंने कर भी दिया, लेकिन इससे गाने का बजट बढ़ गया। पहले इस गाने की लागत थी 25,000 रुपए, जो बढ़कर 50,000 रुपए हो गई। अब जब ये बात जी ओम प्रकाश साहब को पता चली, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, तो वो तो भैया बहुत ही बौखला गए। उन्होंने कहा यार ये क्या बात है, चलो ठीक है इतना पैसा खर्च भी कर दूं मैं, लेकिन इसके बाद भी अगर गाना अच्छा नहीं बना तो। बार बार वो 50,000 खर्चा कर दिए, 50,000 खर्चा कर दिए, ये बड़बड़ाने लगे, कहने लगे। तो साहब ये बात किशोरदा को सुनाई दे गई जब वो रिकॉर्डिंग के लिए आए तो, और उन्होंने आरडी बर्मन से सारा माजरा पूछ लिया। बर्मन दा ने उन्हें कहा कि यार देखो तुम टेंशन वेंशन मत लेना, जमकर गा लो दिल लगाकर, बस मस्ती डाल दो इस गाने में, रिकॉर्डिंग शानदार होनी चाहिए। बहरहाल गाना रिकॉर्ड होने लगा, किशोरदा ने अपनी आवाज में पूरी मस्ती घोलते हुए उस गाने को गा दिया। सब सही जा रहा था, तभी अचानक उनको शरारत सूझी। इस गाने के एंड में ना म्यूजिक तेज हो जाता है, और वहाँ किशोर ने अपनी मर्जी से ही कुछ गा दिया जो लिरिक्स में था ही नहीं। आप जरा गौर से सुनिएगा, जब वो एंड में कहते हैं बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, अरे बजाओ 50,000 खर्चा कर दिए, बजाओ बजाओ। जी ओम प्रकाश साहब की 50,000 वाली रट का ये किशोरदार स्टाइल बदला था, वो गाने का हिस्सा वैसे रखा गया, और आज तक इस गाने में किशोरदा की वो शरारत छुपी हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो गाना जरूर सुनवा दूं, और कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक गाना वो अपनी मर्जी से सुना दें, क्योंकि ये एल्बम कमाल का है, इसमें से एक गाना सुनना तो नाइंसाफी होगा और सुनाना भी। तो कंप्यूटर जी दो गाने आपकी कसम से प्लीज, आपको कसम है मेरी। आप सुन रहे हैं रेडियो 24/7 लाइव पर समर के साथ यादों का कारवां। बस मैं यूं गया और यूं आया। 1974 है आज चर्चा में।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। 1974 के साल से गुजर रहा है आज यादों का कारवां। मैं इस कारवां में आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। तो चलिए अब अगली फिल्म का जिक्र कर लेते हैं। आपने ऑलराउंडर वर्ड तो जरूर सुना होगा, अक्सर इसे क्रिकेट की लैंग्वेज में यूज किया जाता है, लेकिन क्या आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी किसी पर्सनैलिटी के नाम को गिना सकते हैं जो इस फील्ड में ऑलराउंडर रही हो? सोचिए। वैसे जहां तक बीते दौर की फिल्मों का सवाल है तो उनमें राज कपूर साहब, किशोर कुमार और मनोज कुमार साहब के नाम इंडस्ट्री में एज ऑलराउंडर लिए जा सकते हैं। अब देखिए ना, ये तीनों ही अपने जमाने के धुरंधर रहे हैं। चाहे डायरेक्शन की बात हो, प्रोडक्शन की बात हो, डायलॉग्स हो, एक्टिंग हो, हर बात पर इनकी मास्टरी रही है। क्यों, इत्तेफाक रखते ना मुझसे आप? खैर, जैसा कि मैंने अभी मनोज कुमार साहब का जिक्र किया, ज्यादा जोर लगाकर जिक्र किया, उनमें भी जबरदस्त काबिलियत थी। फिल्म के जरिए वो अपनी बात को लोगों तक सटीक तरीके से पहुंचाने की समझ रखते थे और इसका एक बड़ा एग्जांपल हम देख सकते हैं 1974 में आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में। वाह, क्या कमाल की मूवी थी ये। आज भी जब इस फिल्म को देखने बैठता हूँ तो पूरी फिल्म देखे बगैर उठ ही नहीं पाता, कमाल की ये। वेल, इस एक फिल्म में मनोज कुमार अकेले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एडिटर और एक्टर की भूमिका में दिखाई दिए थे। अब बताइए, मनोज कुमार थे ना ऑलराउंडर। बहरहाल, इस फिल्म से जुड़ी एक मजेदार बात भी है और वो ये कि फिल्म में मनोज कुमार साहब का नाम भारत रखा गया है और फिल्म के कई हिस्सों में महंगाई का जिक्र भी हुआ है। यहाँ तक कि पूरा गाना ही महंगाई पर है। हाय हाय महंगाई महंगाई महंगाई, तू कहां से आई, तुझे क्यों मौत ना आई, नरेंद्र चंचल की आवाज में गाना। अब सोचिए, 44 साल के करीब हो रहे हैं, ऐसा लगता है मनोज कुमार साहब आज के हिंदुस्तान का फोरकास्ट तभी लिख गए थे। इंडिया में आजकल बहुत महंगाई भाई साहब, और शायद इसीलिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लेकर सीन क्रिएट किए थे। तब के डायलॉग्स और सीन्स आज भी वायरल हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं फूड, क्लोथ एंड शेल्टर की, मेरा मतलब रोटी, कपड़ा और मकान की। तो इसमें कुल 5 गाने हैं। गानों को म्यूजिक मिला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जुगल जोड़ी का और आवाज मिली है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर साहब की। वैसे यहाँ एक बात और बता दूं मैं आपको, अमिताभ बच्चन साहब और शशि कपूर साहब की सुपरहिट जोड़ी की ये पहली फिल्म थी। इसके बाद इस जुगल जोड़ी ने 10 से भी ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि फिल्म ने एक ऐसा जबरदस्त असर छोड़ा कि मनोज कुमार साहब का निकनेम ही भारत पड़ गया, भारत कुमार, है ना कमाल की बात। तो बहरहाल, इस नॉलेज, इस जानकारी के बाद आपको सुना देता हूं इस फिल्म से ये गाना। आप सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर यादों का कारवां समर के साथ।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

खबरें थी। अभी एक तो जिक्र किया मैंने रोटी कपड़ा और मकान का, तो ठीक इसी नाम से जुड़ी एक और फिल्म आई थी, नाम रखा गया था इसका रोटी। अब बताइए नाम में है ना कितनी सिमिलरिटी, मतलब रोटी कपड़ा और मकान की सिर्फ रोटी भी एक कमाल की हिट फिल्म थी। और ये फिल्म 18 अक्टूबर 1974 को रिलीज हुई। सोचिए सिनेमा गोअर्स का क्या हाल हुआ हुआ उस वक्त, एक जैसी नाम की दो मूवी और दोनों ही लाजवाब। किसे मिस करें, किसे देखें, किसे नहीं देखें, ये सवाल उनके दिमाग में जरूर कौंध रहे होंगे। बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ उन्होंने, और हुआ यूं कि लगभग सभी ने दोनों ही फिल्मों को खूब पसंद किया। वेल, जहां तक रोटी मूवी का सवाल है तो मनमोहन देसाई साहब ने इसे डायरेक्ट किया और लीड एक्टर राजेश खन्ना साहब ने रजनी देसी के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस किया। एक्शन का तड़का लगी इस फिल्म के डायलॉग्स तो कमाल के थे ही, कमाल इसलिए क्योंकि इसके पीछे कादर खान साहब का टैलेंट बिखरा हुआ था। वाकई डायलॉग्स ही थे जो इस फिल्म की जान रहे हैं। बताते हैं कि इन दमदार डायलॉग्स के लिए उस वक्त कादर खान साहब को करीब 1,21,000 रुपए का अच्छा खासा पेमेंट किया गया था। ये रकम तब कोई छोटी मोटी नहीं थी। खैर, बॉक्स ऑफिस पर रोटी सुपरहिट फिल्म बनकर उभरी। सिर्फ राजेश खन्ना या मुमताज ही नहीं बल्कि छोटे छोटे दूसरे किरदारों ने भी अपने दर्शकों का दिल जीत लिया। निरूपा रॉय, जगदीप, पिंचू कपूर, जगदीश राज, विजू खोटे, ओम प्रकाश और असरानी के साथ जीवन भी इस फिल्म में याद रह जाते हैं। हर कोई अपने आप में कमाल था। 1959 में आई इंग्लिश मूवी द फेस ऑफ फ्यूजिटिव से ये इंस्पायर्ड थी। बहरहाल जनरल नॉलेज की बहुत सारी बातें हो गई, अब एक काम करते हैं, गाना वाना सुन लेते हैं, मजे कर लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं। खट्टे मीठे कस्से लेकर मैं लौटूंगा, आप सुनते रहेगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां। आज का सफर हमारा जो है वो गुजर रहा है 1974 के साल से। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों का हम जिक्र कर रहे हैं, उनके धमाकेदार सॉन्ग्स आपको सुनवा रहे हैं। तो आपने अभी तक जान लिया होगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस वक्त किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। वैसे हमेशा होते रहते हैं, और इनफैक्ट किस हद तक जाकर रिस्क उठाए जा रहे थे। और क्या, अब ये रिस्क नहीं है तो क्या है? एक जैसे मिलते जुलते नामों की फिल्म बनाना, रोटी और रोटी, कपड़ा और मकान, ये रिस्की तो है। और दोनों टॉप एक्टर्स के साथ एक ही दिन रिलीज हुई है ये फिल्में दोनों, लेकिन दोनों ही चली। जबकि प्रोड्यूसर्स को ये पता था कि ये एक साथ रिलीज करेंगे तो बहुत नुकसान कर सकती है एक दूसरे को, लेकिन दोनों ने नहीं किया क्योंकि दोनों की कहानी अलग तरह की थी। और यकीन मानिए, इन दोनों ही फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये दोनों ही हिट हो गई। खैर, चलिए बात करते हैं अगली फिल्म की जो इस दौर में आई थी। वो थी, चलिए हिंट देता हूँ, उसके नाम से एक नहीं बल्कि तीन फिल्में बन चुकी हैं। जरा अंदाजा लगाइए किस फिल्म का जिक्र कर रहा हूँ मैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ 1974 की फिल्म चोर मचाए शोर की। सेम इसी नाम से पाकिस्तान में भी 1996 में एक फिल्म आई थी, और फिर इसके बाद 2002 में बॉलीवुड में एक और फिल्म आई जिसमें बॉबी देओल, शिल्पा शेट्टी और बिपाशा बसु थे। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा पसंद की गई 1974 वाली चोर मचाए शोर। शशि कपूर साहब, मुमताज, असरानी, डैनी, ये इस फिल्म के मुख्य किरदार थे और ये बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। म्यूजिक रविंद्र जैन साहब का था इस फिल्म में, और उनके पांचों के पांचों गाने धमाकेदार थे, जबरदस्त हिट हुए। उनमें से एक गाना तो आज तक हर बारात की जान रहता है, याद है ना आपको, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वास्तव में इतना जोशीला गाना है ना ये कि क्या कहिए। जैसे ये गाना सुनता हूँ मैं तो भैया नाचने लग जाता हूँ, ऐसे हाथों को पीछे की तरफ लहराते हुए। वैसे एक और दिलचस्प बात है इस फिल्म की, और वो ये कि ये जो प्रोड्यूसर साहब थे ना इसके, NN सिप्पी साहब, उन्होंने महज 2 साल बाद ही सेम टीम के साथ 1976 में फकीरा बनाई थी, और दोस्तों फकीरा भी अच्छी खासी चल पड़ी थी। तो फिलहाल तो हम भी चल पड़ते हैं अपने अगले गाने की तरफ, और गाना कौन सा होगा ये अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है। अरे भैया, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आखिर DDLJ नाम इसी गाने से तो मिला था। हा? तो ये गाना सुनिए, एंजॉय कीजिए और सुनते रहेगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर। I'll be right back.

0: चल फिर चलिए सोनिए निबलिए दिल की दुनिया बताएंगे वो बुल बुल
1: जाएंगे
0: ले।

0: घर पे खड़े हैं कल्याण कर दो,
1: कल्याण कर दो,
2: काम कोई एक तो महान कर दो,
1: महान कर दो,
0: घर से दहेज कभी बच जाएगा, लगे हाथों कन्या का दान कर दो,
1: कन्या दान कर दो,
2: कभी कभी
1: घर से रख समझ कर दर्शन को हम आएंगे।

वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां और मैं हूं आपके साथ इस कारवां में आपका हम सफर समर। रेडियो मसी 24/7 लाइव है ये सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो 24 घंटे आपके साथ। चलिए हम 1974 की एक और फिल्म का जिक्र कर लेते हैं। 1974 में एक फिल्म आई थी हवस। इस फिल्म का जिक्र करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक देखी कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बात की और हम कर भी रहे अपने शो में, लेकिन इस दौरान कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी आए जिन्होंने अपनी बुलंदियों के झंडे गाड़ दिए और उन्होंने अपनी फिल्मों से दर्शकों के दिल पर राज करना शुरू कर दिया। उस समय बड़े नामों के बीच एक उभरता हुआ नाम सामने आया था और वो नाम था द ग्रेट सावन कुमार टाक साहब का। जी हाँ, रोमांटिक फिल्में बनाने के मास्टर सावन कुमार टाक ने जिंदगी में काफी संघर्ष किया और उसके बाद अपने काम और टैलेंट की बदौलत उनको इंडस्ट्री में काम भी मिल गया, एक पहचान मिली। पता है आपको, सावन कुमार साहब चाहते तो खुद एक एक्टर बन सकते थे, बड़े हैंडसम बड़े खूबसूरत हुआ करते थे वो, लेकिन इसे किस्मत कहिए या यूं कहिए कि कई ऐसे लोग होते हैं जो खुद खिलाड़ी नहीं होते हैं बल्कि कोच होते हैं, दूसरे खिलाड़ी तैयार करते हैं, उनमें से सावन कुमार साहब भी थे। उन्होंने बहुत सारे न्यू कमर्स को एक्टर बना दिया, एस्टेब्लिश कर दिया। बहरहाल सिंगापुर 1974 में उनकी एक मूवी आई थी, नाम था उसका हवस। इसमें डायरेक्टर भी वही थे, प्रोड्यूसर भी वही थे, राइटर भी वही थे, इवन सॉन्ग के लिरिक्स राइटर भी वही थे। अब बताइए, थे ना सावन कुमार टांग साहब ऑल राउंडर। वैसे हवस उनकी पहली फिल्म नहीं थी, उनकी पहली फिल्म थी मीना कुमारी जी के साथ बनाई गई गोमती के किनारे। और जब ये फिल्म आई जिससे उन्होंने अपना इंडस्ट्री में खाता खोला, तो जैसे कि परिपाटी है इंडस्ट्री में चर्चा चल जाती है डायरेक्टर और एक्ट्रेस के बीच, एक्ट्रेसेस के बीच, खासतौर से अगर मेल डायरेक्टर है तो काफी एक नजदीकी की बातें या यूं कहूं कि गॉसिपिंग शुरू हो जाती है। तो पहली फिल्म से सावन कुमार साहब का नाम मीना कुमारी जी के साथ जोड़ कर लिया जाने लगा था। चलिए फिलहाल तो हम हवस पर लौट आते हैं, मतलब हवस फिल्म पर लौट आते हैं। हवस का म्यूजिक दिया था सावन कुमार साहब की पत्नी उषा खन्ना जी ने। बहुत कम लोगों को पता है कि सावन कुमार साहब की पत्नी है उषा खन्ना। फिल्म के गाने बहुत अच्छे चले, पर सबसे ज्यादा जो गाना हिट हुआ वो था वाकई जादुई गाना था, जिसे अपनी मखमली आवाज में गाया मोहम्मद रफी साहब ने। गाने के बोल थे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। वाकई बहुत खूबसूरत गाना था। यही तो वजह थी कि ये उस वक्त के 1974 के बिनाका गीतमाला के एनुअल लिस्ट के टॉप 10 सॉन्ग्स में शामिल था। आज भी जब आप इस गाने को सुनेंगे ना तो वाकई एक अलग सा फील आएगा। वास्तव में सही कह रहा हूँ, यकीन नहीं होता तो आप खुद सुन लीजिए, लौट कर जरूर आएगा क्योंकि समर कर रहा है आपका यहीं पर इंतजार। ये है रेडियो मस्जिद 24/7 लाइव और आप सुन रहे हैं यादों का कारवां।

वेलकम बैक सिंगापुर। 1974 का साल है आज चर्चा में। 1974 की फिल्मों का जिक्र लेकर एक बार फिर से लौट आया है समर यादों का कारवा पर। तो आज रेडियो मजी 24/7 लाइव की इस खूबसूरत महफिल में अगली फिल्म का जिक्र करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमने देखिए प्रोड्यूसर्स की बात की, डायरेक्टर्स की बात की, एंड ऑफ कोर्स ऑलराउंडर सावंत कुमार साहब के बारे में भी हमने बताया। इस दौर में एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर और आए थे, उनका नाम था मोहन कुमार साहब। मोहन कुमार की एक खास बात थी जो ज्यादा लोगों को पता नहीं थी उस वक्त, और वो ये थी कि उन्होंने जो भी 12-13 फिल्में डायरेक्ट की उन सभी फिल्मों के नाम ए लेटर से शुरू होते थे। जी हाँ, वैसे ही जैसे राकेश रोशन की फिल्मों के नाम के से शुरू होते हैं, एकता कपूर के सीरियल्स के नाम के से शुरू होते हैं। वेल, ये जो मोहन कुमार साहब थे उनकी फिल्में आई आस का पंछी, अनपढ़, आई मिलन की बेला, आपकी परछाइयां, अमन, अनजाना, आप आए बहार आई, आप बीती, अवतार, ऑलराउंडर, अमृत अंबा, ओ मतलब बहुत सारी फिल्में अ से ही शुरू हुई हैं, ए से शुरू हुई हैं। इस बीच 1974 में उनकी अमीर गरीब फिल्म भी आई। फिल्म के हीरो थे एवरग्रीन देवानंद, पर उस समय उनका जो करियर था वो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा था, बल्कि यूं कहूं कि डामाडोल हो रहा था, गिर रहा था। यानी कि एक मूवी हिट तो उसके बाद की 5-6 मूवी सुपर फ्लॉप हो रही थी और फिर वापस धमाकेदार हिट दे देते थे वो। वेल, अमीर गरीब में उनके ऑपोजिट थी हेमा जी, हेमा मालिनी, उस वक्त 50 साल से ज्यादा उम्र के देवानंद साहब, और उनसे आधी उम्र की उनकी हीरोइन हेमा जी के करियर के लिए अमीर गरीब बहुत काम कर गई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की। दरअसल इससे पहले 1970 में इस जोड़ी ने जॉनी मेरा नाम में भी साथ काम किया था, जिसे पसंद किया गया और उसी का फायदा कहीं ना कहीं इस अमीर गरीब फिल्म को भी मिला। खैर, चलिए म्यूजिक की बात कर लेते हैं, हम तो गाने सुनवाने वाले हैं आपको। तो अमीर गरीब में कुल 6 गाने हैं जिनके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, और उन्हें सुरों से सजाया है ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी ने, लक्ष्मी प्यारे की जोड़ी ने। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों ने तो इन गानों में वो कहते ना 4 चांद लगा दिए। इसमें एक गाना है वो जो बहुत पसंद किया गया, सोनी और मोनी की है जोड़ी अजीब, तो दूसरा है बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई, और हाँ किशोर साहब का एक सोलो सॉन्ग भी है मैं आया हूँ, ये जबरदस्त पसंद किया गया। अब आप बोल रहे होंगे यार समर तारीफ ही करते रहोगे गाना भी सुनवाओगे, तो मैं आया हूँ सुनते हैं अपन रेडियो 24/7 लाइव पर। आप मेरे साथ रहिएगा, अभी तो कई फिल्मों का जिक्र बाकी है मेरे दोस्त।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसीह 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां विद समर। और आज 1974 का साल है चर्चा में, उसी की बात हो रही है, उस साल रिलीज हुई फिल्मों की बात हो रही है और फिल्मों के पीछे की कुछ कहानियां भी जो मुझे पता है मैं आपको सुना रहा हूँ। बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक अलग ही दुनिया है। ऑन स्क्रीन काम करते करते यहाँ रिश्तों का मैच इतना पक्का और गहरा हो जाता है कि वो फिर लंबी बारी खेलता है। वैसे इस इंडस्ट्री में रिश्तों के बनते बिगड़ते खेल से तो आप भी वाकिफ होंगे। वेल, सेलिब्रिटीज की बात ही कुछ और होती है भाई, ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती है। लाइमलाइट और ग्लैमर वर्ल्ड के लोगों की और उनकी सोच की बात ही कुछ और है। वो अगर लाइमलाइट में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा भाई। हाँ, खैर रिश्तों का मैंने जिक्र किया तो एक वो फिल्म आई थी ना 1974 में, अरे वो नाम था उसका दोस्त, जो आप और हमें दोस्त धर्म बाजी यानी कि धर्मेंद्र के साथ स्क्रीन शेयर किया था। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी ने और हेमा मालिनी इसमें हीरोइन थी। फिल्म को दर्शकों का बहुत जबरदस्त और अच्छा रिस्पांस मिला, पर पर्दे के सामने जो भी कुछ रहा उससे कहीं ज्यादा पर्दे के पीछे देखने को मिला और वो था धर्म पाजी और शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा साहब की दोस्ती। जी हाँ, दोस्ती। फिल्म करते करते इन दोनों एक्टर्स के बीच की दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। उन दिनों दोनों ने कुछ और फिल्में भी साथ की, लेकिन फिर आया एक लंबा ब्रेक। हाँ, सालों बाद ये बेस्ट फ्रेंड्स दोबारा नजर आए फिल्म यमला पगला दीवाने के सीक्वल में। तब भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने मीडिया के सामने धर्मेंद्र साहब और उनके बीच की जबरदस्त बॉन्डिंग के बारे में कुछ बातें शेयर की थी। बहरहाल, जो दोस्त मूवी है उसमें अमिताभ बच्चन साहब का भी बतौर गेस्ट अपीयरेंस एक रोल था जिसमें उनका नाम आनंद है। और जहां तक सॉन्ग्स और म्यूजिक की बात है तो इसमें भी वही जोड़ी है जिसने उस दौरान अपने गानों से धमाका मचाया हुआ था। गेस कीजिए, एनी गेसेस? यू गेस इट राइट। जी हाँ, जब आनंद बख्शी गाने लिखेंगे तो उनका म्यूजिक देंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और उन्होंने ही इस फिल्म का म्यूजिक दिया था, कमाल का म्यूजिक। फिल्म में गाने भले ही सिर्फ चार हैं लेकिन ये चार भी 40 से कम नहीं है। मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार और लता जी ने अपनी आवाज से इसमें जादू डाल दिया और इन गानों का दीवाना बना दिया जमाने को। इनमें से दो गाने तो बहुत ही पसंद किए गए, एक तो वो गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है और दूसरा दुनिया जब जलती है, इन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया गया। तो चलिए अभी आपको फ्लैशबैक की दुनिया में लेकर चलते हैं इन गानों के साथ। आप सुनते रहिए समर के साथ यादों का कारवां।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी,
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप.
1: वाजी, क्या बात जी.
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.
3: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
4: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा. गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का.
3: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम. गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई.
4: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज. मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप. आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट.

0: shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
0: 1, 2, 3, 4. Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Masti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: लीजिए एक बार फिर से हाजिर है समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, लेकर यादों का कारवां और कर रहा है आपका स्वागत दोनों बाहें फैलाकर अपने सिग्नेचर स्टाइल में। वेल, आज सिंगापुर हम गुजर रहे हैं 1974 के ईयर से। बहुत ही कमाल का ये साल था और इस साल एक फिल्म आई थी जिसका मैं जिक्र नहीं करूं तो शायद ये शो अधूरा रह जाएगा। उसका जिक्र करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपसे ऑन स्क्रीन काम करते करते पर्दे के पीछे एक्ट्रेस के बीच की बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहा था। हमने बात की धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती की, लेकिन इस पर्दे के पीछे काम करते करते कई ऐसी जोड़ियां भी बनी जो रिश्ते में तब्दील हो गई। जी हाँ, वैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स का आपस में शादी करना कोई नई या बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी गुजरे जमाने में इसे वाकई बड़ी बात के तौर पर देखा जाता था। ऐसी एक जोड़ी जो स्क्रीन शेयर करने के दौरान एक दूसरे से इतनी इंप्रेस हो गई कि ये नजदीकियां सात जन्म के रिश्तों में तब्दील हो गई। और ये सुपरहिट जोड़ी गैस कीजिए कौन सी थी? ये थी इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग के नाम से पहचाने जाने वाले बेहतरीन अदाकार दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो जी की। वैसे इनके प्यार इश्क मोहब्बत की कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल दिलीप कुमार साहब की फिल्म आन जब 1952 में रिलीज हुई थी तब सायरा की उम्र महज 8 साल की ही थी। इश्कबाजी का सिलसिला ऐसा चला कि सायरा बानो ने उम्र में 22 साल बड़े दिलीप कुमार साहब से ब्याह रचा लिया। वैसे सिंगापुर इन दोनों की जोड़ी ने सिने पर्दे पर भी धमाल मचाया। गोपी बैराग फिल्म के साथ ही एक और फिल्म आई थी जो इसी साल आई थी 1974 में, जिसका नाम था सगीना। इसे भी बहुत पसंद किया गया। बंगाली फिल्म मेकर तपन सिन्हा के डायरेक्शन में बनी थी ये फिल्म सगीना। सगीना में सायरा बानो के अलावा अपर्णा सेन भी थी। इस फिल्म को तपन पहले बंगाली में बना चुके थे और ये इसका रीमेक था। इस फिल्म में कुल 4 गाने थे, लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी के थे जबकि म्यूजिक दिया था SD बर्मन साहब ने। तो आपको वो गाना तो याद ही होगा, सलाम भाई तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। वेल, मुझे लगता है कि शायद ये पहला गाना था जो किशोर कुमार साहब ने दिलीप कुमार साहब के लिए गाया होगा। मतलब मेरी नॉलेज में शायद ये पहला ही गाना था। अगर आपको पता है कोई और गाना इससे पहले वो गा चुके थे तो मुझे जरूर बताइएगा। हमारे फेसबुक पेज पर आकर अगर बताएंगे तो पूरे सिंगापुर को भी पता चलेगा। तो चलिए फिलहाल एक काम करते हैं, सलाम भाई तो साहब बन गया सुनवा देता हूँ आपको और आपका इंतजार करूंगा यहीं पर। आप सुनते रहिएगा यादों का कारवां विद समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।
4: साहब बन के कैसा तन

कैसा कंचे कैसा तन का, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का।

पीरे पाप पीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे पाप पीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे कौवा जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अरे क्या जाना हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा क्या जाना हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया इस साल में तो सा बन गया सलामत साहब बन गया साहब बन के कैसा तन गया ये सूट मेरा देखो ये फूट मेरा देखो जैसे गोरा

0: है अलबेली, कैसा राजा भोज बना है मेरा गंगू तेली।
1: क्या गंगू तेली?
0: तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा, हम साला बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गया, साला मैं तो साहब बन गया, ए साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉन स्टॉप म्यूजिक, नॉन स्टॉप मस्ती, ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: नमस्कार एंड वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव। आपने ट्यून इन किया हुआ है और मैं आपके साथ हूँ इस खूबसूरत सफर पर।
1: कौन सा सफर?
0: अरे भैया कमाल करते हो, यादों का कारवां ही, और यादों का कारवां में आप मेरे साथ हैं। 1974 की सैर कर रहे हैं तो ये कमाल का साल था साहब। बेहतरीन मूवीज इस साल आई, बेहतरीन गाने इनके थे, बेहतरीन एक्टर्स और सभी कुछ बेहतरीन था बेसिकली। लेकिन इसी साल कुछ ऐसी फिल्में भी आई जिनके नाम बड़े अटपटे थे, ऐसे अटपटे कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आप ही देख लीजिए, किशोर कुमार साहब की एक फिल्म आई थी, नाम था उसका बढ़ती का नाम दाढ़ी। वैसे ये चलती का नाम गाड़ी का सीक्वल बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। एक कमाल की कॉमेडी थी लेकिन ये चली नहीं ज्यादा। एक फिल्म आई थी चौकीदार, संजीव कुमार और योगिता बाली उनकी हीरोइन थी इस फिल्म में। एक फिल्म का नाम था धुएं की लकीर। भैया वो धुएं की लकीर कभी दिखाई नहीं दी क्योंकि हवा तेज चल गई। बॉक्स ऑफिस पर ये तमाम फिल्में पिट गईं। एक और फिल्म थी फाइव राइफल्स। वेल, क्या मकसद रहा होगा इनका इस तरह के नाम देने का, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलता। मैंने ये फिल्में देखी नहीं है। हाँ एक देखिए, बढ़ती का नाम दाढ़ी मैंने देखी है, वो मुझे बहुत अच्छी भी लगी थी लेकिन पता नहीं क्यों नहीं चली उस वक्त। तो कुल मिलाकर लबुलवाब ये कि ये फिल्में दर्शकों को थिएटर्स तक खींच लाने में कामयाब नहीं हो सकी। खैर चलिए, कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है। बहरहाल अब समर का भी अभी के लिए अलविदा कहने का वक्त आ गया है, तो मुलाकात होगी फिर आपसे। जी हाँ, फिर मिलने के वादे के साथ अभी मैं चलता हूँ, लेकिन जाते जाते 1974 की फिल्म अजनबी का एक और सॉन्ग प्ले कर देता हूँ आपको, जो साल का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले गानों में से एक था। आज भी सुनकर ये बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आएगा। तो आप सुनिए ये गाना, और जाने से पहले बस इतना सुन लीजिए आप कि जो हम कहते हैं वो हम चाहते हैं कि आप करें। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। मोहब्बत बन के किसी के दिल में बस जाइएगा और किसी के चेहरे पर मुस्कान बन के सज जाइएगा। और याद रखिएगा दुआओं में मुझे भी। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। ये है रेडियो मसी 24/7 लाइव, 24/7 लाइव आपके लिए अभी। सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो। बाय बाय, नमस्कार, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बच्चे मर जाओ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, है एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: Yeah,

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

it becomes your destiny. जापानीज में भी कुछ इसी तरह की एक सेइंग है, एंड दिस इज सो वेरी ट्रू. इट मेड सो मच ऑफ सेंस. एंड यहाँ पर सपना आंटी बिल्कुल आ चुकी है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल द अर्ली राइजर्स ज्वाइनिंग इन, ट्यूनिंग इन. भाई 10 बजे तक आपका और मेरा यू रहेगा साथ. सो लेट्स बिगिन. यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए बढ़ते हैं आगे. गुड मॉर्निंग.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: अच्छा सुनो, जरा ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: 1/2 kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू, किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो, और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाजी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंत्रा।
3: 7:00 हो चुके हैं, 19 मिनट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ, और यहाँ पर सलमा के साथ साथ योगेश भी बिल्कुल ट्यून इन कर चुके हैं। और आते ही मेरे को काम पकड़ा दिया उन्होंने कि एक काम करो, देखो तुम्हारी बातें तो जो है वो चलती ही रहेंगी, मेरा गाना एक बार रिक्वेस्ट ले लो और प्ले कर देना। तो भाई अब ऑब्वियसली ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि हमने ऐसा किया नहीं है, बट खबरों के साथ साथ ये सारे काम भी हम कर ही लेते हैं। बट वेल योगेश, आई नो दैट दिस इज time you kind of get ready, so I hope you have a really really good day ahead. खबरों की अगर बात की जाए तो फुली ऑटोमेटेड इन व्हीकल क्लियरेंस जो है फॉर कार ड्राइवर्स एंड पैसेंजर्स, सिंगापुर की बात हो रही है। ये ट्रायल शुरू होने वाला है टुअर्स चेक पॉइंट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड द सिस्टम जो है प्रोग्रेसिवली इम्प्लीमेंट किया जाएगा एट टुअर्स चेक पॉइंट अर्ली 2027 से, बिफोर अ सबसीक्वेंट रोल आउट टू द री डेवलप्ड वुडलैंड्स का चेक पॉइंट। मतलब कि अब सारा कुछ जो है मशीन ड्रिवन ही होने वाला है। वेयर इज दिस, यही पे बढ़ते हुए जा रहे हैं इसी दुनिया के पीछे पीछे। एंड बेसिकली जो पैसेंजर्स है, दे विल बी एबल टू कंप्लीट इमिग्रेशन क्लियरेंस बाय प्रेजेंटिंग अपना क्यूआर कोड या पासपोर्ट, जो क्योस बने हुए हैं अलोंग द एपीसी लेन्स वहां पर। सो कैमराज जो है वो अटैच किए गए हैं ट्रायल बेसिस पे ऑन द 4 क्योस, एंड वो फेशियल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे, एंड द टैबलेट्स डॉक्ड आर at the lanes may also be used just to facilitate the clearance for passengers without window access to the kiosks. And this is what and where the technology is going on. Have you seen the recent this robot? He's kind of going viral. उसको आप घर के सारे काम करा सकते हो टाइप, एंड या इट्स जस्ट अमेजिंग। पहले हमने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट वही सारी चीजें आज हकीकत में टर्न आउट होती जा रही है। फिलहाल यहाँ पे गाना टर्न आउट होगा, पहले तो मेरा गाना, उसके बाद हमारे योगेश जी का गाना ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड मॉर्निंग।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: तो जी योगेश जी, कैसा लगा सुबह सुबह अपने एकदम गाना सुन कर ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव? 7:30 बज चुके हैं बाय द स्टूडियो क्लॉक। चलिए आपको सड़कों का हाल चाल सिंगापुर में बताते हैं। हैवी ट्रैफिक इस वक्त आपको मिलेगा ऑन टीपीई टुवर्ड्स पीआईई बिटवीन लोयांग एवेन्यू एंड पंगोल रोड। हैवी ट्रैफिक की खबर है ऑन एवाई टुवर्ड्स एमसीई बिटवीन क्लेमेंटी रोड एंड चिनरोंग टाउन हॉल रोड। और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन पीआईई टुवर्ड्स टुअर्स बिटवीन सीटीई सिटी एंड बिडोक नॉर्थ एवेन्यू 3। तो ये रहा इस घंटे ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज डोमिनिक सीरीज़ो की आवाज। मूवी का नाम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एंड दैट इज सो वेरी ट्रू। तो इसीलिए इसको बहुत ही ध्यान से इच्छी ना मेरे दोस्त।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
3: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
4: वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ, और यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा, जहाँ पर एक तरफ भारतवर्ष में कहा गया है कि भाई सोना मत खरीदो, बाहर फॉरेन ट्रिप्स में जाओ, डेस्टिनेशन वेडिंग्स और शादियों में बिल्कुल ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान में रखो, वर्क फ्रॉम होम, मतलब ये सारी चीजें कही जा रही है। वहीं पर हमारे SS राजामौली सर और उनकी टीम ने मांग लिए है 15 लाख लीटर पानी। जी हाँ, ऑफ कोर्स उनको बिल्कुल उसकी परमिशन नहीं मिली है, बट दिस इज ट्रू। नाउ SS राजामौली सर जो है, ही इज कमिंग विद दिस एपिक एंड रियली ग्रैंड मूवी। महेश बाबू एंड प्रियंका चोपड़ा इसमें नजर आने वाले हैं, वाराणसी। एंड ये जो है एक स्काईफाई और एपिक जो है एक मूवी बनने के कगार पे बिल्कुल है, बट अभी एक अनएक्सपेक्टेड सा हर्डल जो है इनके हैदराबाद स्केड्यूल में आ गया है। सो द मेकर्स हैड रिक्वेस्टेड a massive 15 lakh liters of water, which is around 150 tankers, samajh lijiye, for filming underwater sequences at a specially constructed set jo hai inhone banaya hua hai. However, city authorities jo hai unhone kaha hai ki bhai aisa nahi ho sakta due to the ongoing, of course, water shortage and the soaring demand is harsh summer mein. Now, with Hyderabad struggling to meet the daily water needs, officials reportedly jo hai, chose to prioritize public consumption over film production. Thank God for it. Matlab, agar aisa ho jata to fir kya hi bole? Thodi der pehle hi main Tamil Nadu ke CM ki tareef kar rahi thi yahan pe. Now, the team, which had assured payment and even requested purified water for shooting ke standards and everything, is now exploring alternative arrangements ki kya kiya ja sakta hai. Kyunki फिल्मिंग तो कंटिन्यू होनी है थ्रू आउट मे, एंड वाइल देर इज नो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन येट, ये सिचुएशन हैज स्पार्क्ड कॉन्वर्सेशंस ऑनलाइन अबाउट काइंड ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन द रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकिंग। अब क्या करेंगे, हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? वन थिंग आई नो फॉर श्योर, विच वी इंडियंस आर नोन फॉर, हम जुगाड़ वाला जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं से जो है कोई ना कोई फिगर आउट कर ही लेता है, एंड वी आर गुड एट दैट. And we all know that. So I'm sure that they'll also figure out something. And especially with a detail-oriented director like SS Rajamouli sir, you never know. कुछ भी हो सकता है. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यहाँ पे कुछ भी नहीं, अच्छे अच्छे गाने प्ले होंगे. शायद कुछ लोगों को कुछ गाने पसंद नहीं आए जो मुझे अभी यहाँ पे लिख रहे थे, बट देन शायद कुछ लोगों को गाना पसंद आ भी सकता है. गुड मॉर्निंग.

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: Your weekly mood lift mantra. Only with RJ Antra.
1: दिस गाना अरिजीत सिंह के साथ गुलजार साहब जब शुरुआत में अपनी आवाज में बोलते हैं तो एकदम छा ही जाता है. वेल, ये घंटा होने वाला है खत्म. मस्ती का मंत्र चढ़ रहा है यहाँ पे अंतरा के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. कमिंग अप नेक्स्ट इज एंड रैपिंग अप द आवर इन हर ओन सासी वे इज जैस्मिन विद ऑफ कोर्स यो हनी सिंह. यस ये वही जैस्मिन है जिनके गाने को मैंने पिछले हफ्ते जो है मस्ती टॉप चार्ट्स में से बाहर निकाल दिया था. बहुत मजा आया मुझे. बट एवरीबडी अग्रीड विद माई नंबर वन. आई होप दैट दैट न्यू नंबर वन स्टिल स्टेज. बट उसको जानने के लिए आपको फ्राइडे तक इंतजार करना पड़ेगा एंड यू हैव टू ऑल्सो ट्यून इन जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा नंबर वन कहीं हट ना जाए वहां से. गुड मॉर्निंग.